मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेब्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जून 2026, सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली

0: 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है मिर्चा की खेती। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम मिर्चा की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। समय चल रहा है, आप इसकी पहले नर्सरी तैयार करें और फिर मुख्य खेत में रोपाई करें। LCA 235 पूसा ज्वाला

0: पूसा सदाबहार, जवाहर मिर्च 218, ये सब इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। संकर किस्मों को भी बो सकते हैं, जैसे तेजस्विनी प्रजाति है, आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अच्छी प्रजाति के बीज उपलब्ध करा रही हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी पाई गई है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, मिर्चा की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिर्चा की खेती के लिए खेत की 2-3 बार जुताई करके, पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में अगर नर्सरी तैयार करना है तो 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इससे जो पौध तैयार होगी उससे 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई की जा सकेगी। इसकी नर्सरी के लिए जो क्यारियां बनाते हैं उसके लिए ये जरूरी है कि मिट्टी जीवांश युक्त हो, यानी कि उसमें गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद अच्छी तरह से मिलाकर तैयार की जाए। जब क्यारियां बनाते हैं तो यह ध्यान रहे क्यारियों की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर की दर से 10 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 1 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके नर्सरी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। क्यारियां जमीन की सतह से 20 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई हों। यह ध्यान रहे कि जो बुआई करें तो वो अधिक घनी नहीं होनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की अगर बुआई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहने का मतलब ये कि लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना करके और फिर इन्हीं लाइनों पर मिर्चा की बुआई करते हैं। बीज की बुआई के बाद क्यारियों को सड़ी हुई गोबर की खाद या पत्ती की खाद, कंपोस्ट खाद से ढक देते हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी बैठने न पाए। तत्पश्चात फुहारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अब इन क्यारियों को धूप व ठंड से बचाने के लिए घास फूस की छप्पर से ढक देना चाहिए। जब बीज पूर्णतया जम जाए तो घास फूस हटा लेना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार फुहारे से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। हाँ, अगर बारिश होती है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से लगभग 4 सप्ताह में पौध रोपाई के योग्य हो जाती है। रोपाई करने के लिए मुख्य खेत को तैयार करने हेतु सबसे पहले 250 से 300 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देते हैं। इसके बाद फिर तत्व के रूप में 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि लगभग 200 किलोग्राम यूरिया, 240 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पहले ही खेत में मिला देना चाहिए तथा शेष जो नाइट्रोजन बचती है उसे 2 बराबर भागों में बांट करके पहली मात्रा रोपण से 25 दिन बाद और फिर जो शेष मात्रा बचती है उसे 45 दिन बाद खड़ी फसल में बुरकाव करना चाहिए। पौध रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में पानी की मात्रा, मिट्टी की किस्म, क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा और उगाई जाने वाली किस्म पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो रही है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मी के महीनों में सिंचाई 1 सप्ताह के अंतराल पर करना चाहिए। ध्यान रहे वर्षा का पानी खेत में ज़्यादा समय तक नहीं लगे रहना चाहिए, अन्यथा पौधे मर जाते हैं। अतः जैसे ही खेत में ज़्यादा पानी लग जाए तो उसकी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मिर्चा की खेती करनी चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। मिर्चा की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रेम और समर्पण का प्रतिफल है भक्ति। भक्त जो अपने आराध्य और अपने जीवात्मा के बीच एक संचार बनाता है, उसी संचार का नाम है

भाव, प्रेम और समर्पण इन दोनों के बीच की धुरी पर घूमता है। यही धुरी हमारे जीवन में भक्ति को सफल कर सांसारिक पुनरावृत्ति से बाहर करता है। भक्ति प्राप्त कर चुका मनुष्य स्वयं तो सांसारिक पुनरावृत्ति से बाहर होता है, वह अन्य लोगों को भी मार्गदर्शन प्रदान कर इस सांसारिक पुनरावृत्ति से बाहर

सांसारिक पुनरावृत्ति से बाहर होता मनुष्य सिर्फ भक्ति प्राप्त कर सांसारिक पुनरावृत्ति ही नहीं, बल्कि वह जीवन और जीव के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है, जो जीव की जीवन के पूरक के रूप में होता है। भक्ति से जीव अपने जीवन को सही अर्थों में सुगम बनाता है। भक्ति से जीवन में अनुराग जन्म लेता है और वही अनुराग भक्त के जीवन में प्रेम का संचार करता है। ये प्रेम और कुछ नहीं, समर्पण का ही भाव है जो एक भक्त अपने प्रभु के प्रति प्रदर्शित करता है।

0: योग्य है और आत्मा धारण करने योग्य है। आत्मचिंतन का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का आत्मा में आत्मा द्वारा चिंतन अथवा संज्ञान। प्रणादर्श ने भी आत्मा की परिभाषा युक्त युक्त दी है। ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान का आधार आत्मा होता है। समस्त ज्ञान राशि आत्मा में निहित है, आधाराधेय भाव से जाना जाता है। आत्मा के दो भेद बताए गए हैं, जीवात्मा एवं परमात्मा। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देता है। जीवात्मा नित्य है और व्यापक है। परमात्मा सर्वज्ञ है और वही ही ईश्वर कहा जाता है, वह एक है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में मुक्त कंठ से लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वास्तव में जीवात्मा एवं परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस सुषुप्त प्रमाण से भी स्पष्ट अभेद की प्रतीति होती है। आत्मचिंतन का वास्तविक अर्थ है चराचर जगत की जीवों के लिए चिंतन करना, उसके लिए सोचना, यही आत्मचिंतन है। जीवात्मा प्राणी कैसे जगत में जीवित है और उसके सुख एवं दुख के लिए चिंतन करना, सोचना तथा विचार करना तथा उसके दुख दूर करने के कारण का पूर्णतया पता लगाना और मनसा वचसा और कर्मणा उसमें लग जाना, यही आत्मचिंतन है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। राजा शिवी एक धार्मिक राजा थे। एक पौराणिक कथा है, एक बहेलिए ने कपोत को जाल में फंसाया। राजा शिवी ने कहा, बहेलिए इसे न पकड़ो और न इसे मारो। बहेलिए ने कहा, मुझे मांस चाहिए। राजा शिवी ने कहा, मैं उसके बदले तुझे अपने शरीर का मांस देता हूँ। बहेलिए ने स्वीकारा। राजा शिवी ने कपोत के बराबर अपनी कनिष्ठकांगली चाकू से काट काट कर तराजू पर रख दी, परंतु कपोत के बराबर का नहीं हुआ। बहेलिए ने कहा कि न्यून है। राजा शिवी ने पुनः हाथ काट कर रख दिया, तब भी उसके बराबर का न हो पाया। तब राजा शिवी ने अन्य शरीरांग को काट काट कर रखा, तब भी बराबर नहीं हुआ। इसके पश्चात राजा शिवी स्वयं तराजू के पलड़े पर बैठ गए, तब बराबर हुआ। इतने पर धर्मराज विष्णु भगवान आ गए और शिवी से बोले, राजन, तुम्हारे जैसा इस संसार में जीवात्मा का चिंतन करने वाला कोई नहीं है। तुम बड़े महान उपकारी हो। इस प्रकार का त्याग हो तभी आत्मचिंतन हो सकता है। सत्य आत्मचिंतन यही है। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए ही सज्जनों का ऐश्वर्य होता है। जीवात्मा के प्रति प्रत्येक प्राणी उसके सुख एवं दुख को समझे, तभी यथार्थ आत्मचिंतन हो सकता है। आत्मचिंतन से सत्यम शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति होती है। आत्मचिंतन में ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं श्री ब्रजनंदन श्री कृष्ण जी ने समस्त जीवन प्राणी मात्र हेतु समर्पित किया था। प्रति प्राणी यदि आत्मचिंतन की धारा से संलग्न हो जाए तो किसी को किसी प्रकार का दैहिक दैविक एवं भौतिक परताप नहीं हो सकता। सर्वजन सुखाय तथा सर्वजन हिताय की भावना से ओतप्रोत होकर आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्म उपमेन सिद्धेत दयाम कुर्वन्ति साधवः। सज्जन अपनी ही तरह अन्य पर दया एवं व्यवहार करते हैं। आत्मचिंतन से व्यक्ति से लेकर समष्टि तक कल्याण होता है। राष्ट्रहित तथा विश्वहित में आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मा निर्लेप है, अखेद्य है और अभेद्य है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदंत शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था आत्मचिंतन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज के इस कार्यक्रम का विषय है मधुमेह, कारण लक्षण और उपाय। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे।
2: हेलो नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर प्रवीण पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने समझा कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है और यह क्यों होता है। अब हम बात करेंगे मधुमेह के

0: लक्षण, जांच और डायग्नोसिस के बारे में। श्रोताओं, डायबिटीज के सबसे बड़ी समस्या यह है, कई बार यह बीमारी वर्षों तक चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है और मरीज को पता ही नहीं चलता। इसलिए डायबिटीज को अक्सर साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। मधुमेह के सामान्य लक्षण है बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना, कमजोरी और थकान, वजन कम होना, आंखों से धुंधला दिखना, घाव देर से भरना, हाथ पैरों में झनझनाहट। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब खून में शुगर बढ़ जाती है तो शरीर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए पेशाब ज़्यादा आता है, शरीर में पानी कम होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, और क्योंकि ग्लूकोज कोशिकाओं तक शरीर सही तरीके से नहीं पहुँच पाता, इसलिए कमजोरी महसूस होती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, कई लोगों में डायबिटीज़ का कोई भी लक्षण नहीं होता। कई मरीज रूटीन जांच में अचानक डायबिटिक निकलते हैं, जबकि उनके अंदर डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं रहते। इसलिए केवल लक्षणों पर डिपेंडेंट न रहें, बल्कि समय समय पर जांच करा लें। किन लोगों को नियमित जांच जरूरी करानी चाहिए? यदि जिसका बॉडी वेट ज़्यादा हो, पेट निकला हो, परिवार में डायबिटीज हो, बीपी या कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो, फिजिकल एक्टिविटी कम करता हो, उम्र 35 से 40 से ऊपर हो, तो समय समय पर डायबिटीज की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। अब समझते हैं डायबिटीज की मुख्य जांचें। पहली जांच, फास्टिंग ब्लड शुगर। यह कम से कम 8 घंटे खाली पेट की जाती है। सामान्यतः 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू होता है। यदि फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच है तो प्री डायबिटिक होता है। 126 या उससे अधिक हो तो संभावना है कि डायबिटिक। आगे हम बताएंगे प्री डायबिटिक क्या होता है। दूसरी जाँच, पीपी शुगर यानी पोस्ट प्रैंडियल शुगर। यह खाने के 2 घंटे बाद की जाती है। ध्यान रहे, 2 घंटे खाने की शुरुआत से गिने, न कि खाने के बाद। यदि पीपी शुगर यानी पोस्ट प्रैंडियल शुगर 140 से कम है तो सामान्य माना जाता है। 200 या उससे ज़्यादा होने पर हो सकता है डायबिटीज हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जांच, HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। यह पिछले 3 महीने के एवरेज शुगर बताती है। यदि HbA1c 5.7% से कम है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 है तो प्री डायबिटिक, और 6.5 या उससे ज़्यादा डायबिटीज सजेस्ट करता है। HbA1c क्यों जरूरी है? क्योंकि कई मरीज टेस्ट से पहले 1-2 दिन डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे फास्टिंग शुगर थोड़ी नॉर्मल आ जाता है। लेकिन HbA1c लंबे समय का, लगभग 3 महीने का शुगर कंट्रोल दिखाता है, इसलिए यह बहुत यूजफुल। अब आते हैं प्री डायबिटीज क्या होता है। यह डायबिटीज से पहले की स्थिति है। इस स्टेज में शुगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन डायबिटीज इतना नहीं होता। अगर इसी समय वजन कम कर लिया जाए, एक्सरसाइज शुरू कर दिया जाए, खान पान सुधार लिया जाए, तो आगे डायबिटीज होने से बचा जा सकता है। डायबिटीज की पुष्टि यानी डायग्नोसिस कैसे होती है? यदि किसी व्यक्ति की फास्टिंग शुगर ज़्यादा आए, HbA1c भी ज़्यादा आए, लेकिन अगर कोई लक्षण ना हो तो एक बार टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। कभी कभी लैब की गलतियों से भी टेस्ट गलत आ जाते हैं, लेकिन अगर दोबारा सेम टेस्ट आता है तो डायबिटीज का संभावना है। लेकिन यदि शुगर 200 से ज़्यादा हो और शरीर में मधुमेह के लक्षण भी हो तो डायबिटीज की डायग्नोसिस कंफर्म है। ध्यान रखें, घर में उपयोग होने वाला ग्लूकोमीटर मॉनिटर के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी प्लाज्मा ग्लूकोज ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, इसलिए डायग्नोसिस के लिए किसी लैब से ही टेस्ट करवाएं। अगले भाग में हम बात करेंगे मधुमेह शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और क्यों समय पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। मधुमेह कारण, लक्षण और उपाय विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे। आओ दोस्तों, स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी के कलाकार थे सुरेश वाडेकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से। आज दिनांक 10 जून 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

0: उर्दू कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 पर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 और रात 10:30 पर सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, और दिन में 12:45 पर पंडित शारदा सहाय का एकल तबला वादन। कार्यक्रम सुगम संगीत में दिन में 12:30 और रात के 8 सुनिए डॉक्टर रेवती साकलकर के गाए भजन। शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में सुनिए गन्ने की फसल में सामयिक कार्य विषय पर वीरेंद्र कुमार सिंह की बातचीत। साथ ही सुनिए अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के गाए किसान गीत। इन्हीं के गाए गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत में सुबह 9:50 और दिन में 1:45 पर। शाम 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में मार्गदर्शन में आप सुनेंगे सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए करियर के अवसर, इस विषय पर जानकारी देंगे प्रोफेसर प्रशांत कुमार। साथ ही सुनिए यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। गैर फिल्मी गीत और गजल के कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 10वीं कड़ी आप सुनेंगे रात 8:10 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग का समय होगा शाम 7:31 पर। अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण शाम 7 किया जाएगा। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का प्रसारण होगा दिन में 2:30 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 से। ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का प्रसारण होगा सुबह 11 से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का आनंद लेंगे आप सुबह 10 से। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा का समय है सुबह 8:45 पर। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह के 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थे हमारे आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से आज दिनांक 10 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वच्छ होगा वातावरण तभी होगा नव जागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है, स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। गांधी जी के सपने का भारत हमें बनाना है, पूरा भारत स्वच्छ रहे यही हमारा नारा है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा।

हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे लेकर आ गई हूँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा ओलियोनाप की वाणी आकाशवाणी। बनारस गर्मी जो है ना, वो अपने पीक पर चल रही है और इस मौसम में लोगों के खान पान की आदतों में बदलाव देखने को मिलता है। इस दौरान भारी तला भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन की जगह हल्का, ठंडा और शरीर को ताजगी देने वाला खाना पसंद किया जाता है। साथ ही बढ़ती गर्मी का असर आपके डाइजेशन पर भी पड़ता है, जिससे गैस, अपच और पेट संबंधी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो बस इन्हीं समस्याओं को लेकर मैंने एक जानी मानी डाइटिशियन से मुलाकात की, जिनसे मुझे बहुत सी जानकारी मिली जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में प्रोबायोटिक्स से भरपूर खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या है, तो आपको बता दूं कि प्रोबायोटिक्स ऐसे लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, पाचन तंत्र को मजबूत रखने और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इन्हें पाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। कई पारंपरिक और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं। तो आइए जानते हैं गर्मियों में प्रोबायोटिक्स लेने के आसान और स्वादिष्ट तरीके। सबसे पहले तो दही प्रोबायोटिक्स का सबसे लोकप्रिय और सस्ता स्रोत माना जाता है। ये पेट को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसे खाने के साथ या स्नैक के रूप में भी आप खा सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में छाछ भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और भोजन को आसानी से पचाने में सहायता करते हैं। साथ ही मीठी या नमकीन लस्सी गर्मी से राहत देने के साथ शरीर को ऊर्जा भी देती है। दही से तैयार होने के कारण इसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं और आप घर का बना अचार इस समय खा सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए कुछ अचार प्राकृतिक प्रक्रिया से बनते हैं, जिससे उनमें लाभकारी बैक्टीरिया विकसित होते हैं। हालांकि इसका सेवन हमें सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। और हमारे उत्तर भारत में लोकप्रिय कांजी एक पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक है। ये पाचन तंत्र के लिए लाभदायक मानी जाती है और गर्मियों में शरीर को ताजगी देती है। और इडली डोसा का बैटर भी फर्मेंटेशन मेथड से तैयार किया जाता है, तो इससे इसमें लाभकारी सूक्ष्म जीव विकसित होते हैं जो हमारे डाइजेशन हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। प्रोबायोटिक्स का पूरा लाभ तभी मिलता है जब इन्हें फाइबर से भरपूर फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी के साथ लिया जाए। इससे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बेहतर बना रहता है। और क्यों जरूरी है प्रोबायोटिक्स? तो एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के अलावा पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। गर्मियों में जब खान पान और तापमान दोनों शरीर को प्रभावित करते हैं, तब प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ पेट की प्रॉब्लम से बचाव में सहायक हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में दही, छाछ, लस्सी, कांजी और बाकी फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर न केवल पाचन को बेहतर रखा जा सकता है, बल्कि शरीर को अंदर से ठंडक और ताजगी भी मिल सकती है। तो गर्मियों में अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल आप कुछ इस तरह रख सकते हैं और आपको दिमागी सुकून देने का काम हम करेंगे इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। तो एंजॉय करिए। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज दिन है बुधवार और तारीख है 10 जून। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में। खास आदियोगी भगवान शिव की पावन नगरी काशी एक बार फिर वैश्विक मंच पर स्वास्थ्य और निरोग काया का संदेश देने के लिए तैयार हो रही है। 21 जून को होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को

लेकर योगी सरकार वाराणसी में तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इस वर्ष योग दिवस स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग की विशेष थीम पर आधारित होगी। वाराणसी में इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिए 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि योग सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ 15 जून को नमो घाट से होगा। इसमें जन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके साथ काशी के घाटों पर भी योग की मुद्राएं दिखाई देंगी। क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी अरविंद कुमार के अनुसार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल भवन, श्री काशी विश्वनाथ धाम, सारनाथ नगर निगम के पार्कों, आयुष चिकित्सालयों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और समस्त ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में भी संस्थाओं द्वारा निर्धारित स्थलों पर बड़े स्तर पर योग सत्र होंगे। गांवों को जोड़ने के लिए युवा मंगल दल को कमान योग को सिर्फ शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण इलाकों के घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम सभा से युवा मंगल दल के एक पुरुष और महिला मंगल दल की एक महिला सदस्य को कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर्स गांवों में जाकर ग्रामीणों को नियमित रूप से योगाभ्यास कराएंगे। लगातार बढ़ते तापमान और तीखी धूप से लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। काशी आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को गर्मी से बचाने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख स्थानों पर ग्रीन शेड, वाटर कूलर और प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल को लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। गंगा स्नान के बाद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब चिलचिलाती धूप का सामना कम करना पड़ेगा। नगर निगम दशाश्वमेध घाट से लेकर काशी विश्वनाथ गली के मोड़ तक लगभग 75 मीटर लंबे मार्ग पर विशेष हरे पर्दे लगवाए हैं। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कतार में खड़े रहने और पैदल चलने के दौरान धूप से राहत मिलेगी। वाराणसी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। गर्मी के मौसम में उन्हें सबसे अधिक परेशानी खुले मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में होती है। इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने धार्मिक स्थलों के आसपास छांव की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर भी ग्रीन नेट लगाए जा रहे हैं। मलदैया, रथयात्रा, तेलियाबाग समेत कई व्यस्त यातायात स्थलों पर बड़े बड़े हरे पर्दे लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले दुपहिया वाहन चालकों, रिक्शा चालकों और पैदल राहगीरों को कुछ समय के लिए छांव मिल सके। इससे लोगों को लू और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाने में मदद मिलेगी। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर के अन्य व्यस्त चौराहों और तिराहों को भी जल्द इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गर्मी से बचाव के सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 17 स्थानों पर आधुनिक वाटर कूलर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही 22 स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है, जहां राहगीरों और आम नागरिकों को निःशुल्क ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर निगम की इस पहल से भीषण गर्मी के बीच शहरवासियों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का लक्ष्य है कि वाराणसी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। काशी में गंगा तट पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए वाराणसी पुलिस ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के तहत जल पुलिस को नया ड्रेस कोड दिया जाएगा, आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा और घाटों की निगरानी के लिए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इन बदलावों से न केवल जल पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि आपात स्थिति में पर्यटकों को त्वरित सहायता भी मिल सकेगी। वाराणसी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक गंगा स्नान, नौका विहार और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पहुंचते हैं। कई बार असावधानी और नियमों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। इन्हीं घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने जल पुलिस व्यवस्था में सुधार का निर्णय लिया है।
अपर पुलिस

आयुक्त वैभव बांगर ने बताया कि जल पुलिस की नई यूनिफॉर्म को विशेष रूप से अधिक दृश्यता और पहचान के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। नई वर्दी के ऊपर की शर्ट येलो रंग की होगी जबकि पैंट नेवी ब्लू रंग की रहेगी। इनका कहना है कि वर्तमान वर्दी भीड़भाड़ वाले घाटों पर आसानी से दिखाई नहीं देती जबकि नई यूनिफॉर्म दूर से ही पहचान में आ जाएगी। इससे पर्यटक और श्रद्धालु जरूरत पड़ने पर आसानी से जल पुलिस तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने बताया कि जल पुलिस कर्मियों को विशेष किट भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें लाइफ जैकेट, लाउड हेलर कैप और सनग्लासेस जैसे उपकरण शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए 20 से 25 कैमरों वाला एक आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। प्रमुख घाटों पर लगाए जाने वाले कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। एडीसीपी ने बताया कि सुरक्षा के साथ साथ जन जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। गंगा आरती के दौरान प्रमुख घाटों पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से सुरक्षा संबंधी संदेश प्रसारित किए जाएंगे। इन वीडियो के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नौका विहार, गंगा स्नान और घाटों पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक 33 FIR दर्ज किए जा चुके हैं और 70 से अधिक नावों को विभिन्न उल्लंघनों के कारण सीज किया जा गया है। पुलिस का कहना है कि पहले लोगों को जागरूक किया जाता था लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। और इस तपती गर्मी में अपने घर के आसपास, अपने छत पर पीने की व्यवस्था चाहे पशु पक्षी हो या कोई इंसान हो उसके लिए जरूर करें, आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को। टाटा।

0: गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी के 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: अधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख लोगों ने बधाई दी। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा के कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने कल लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है।
4: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को

0: करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जनविश्वास एक और जनविश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जनविश्वास थ्री के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की इस पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: एक अन्य बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए कल लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को प्रस्तावित नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय की आज 102वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर बलिया जिले के करनई स्थित गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक

0: समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक

0: बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है बैरागी।

0: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग था बैरागी। तबले पर संगत किया था उस्ताद सबीर खान ने। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:59 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सुबह 8 बजे से होगा समाचार। सबसे पहले 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर खबरनामा मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर खबरनामा का प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की।

0: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन।

0: अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail.

अमेरिकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। और क्रिकेट में दम्बोला में तीन मुल्कों की सीरीज के पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी ने इंडिया ए की श्रीलंका ए को 8 विकेट से हराने में मदद की। अब खबरें तफसील से।

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की लगातार मुद्दतेकार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनवु पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल-ए-ज़िक्र हुसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में कयादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक मामूली समाजी और इक्तसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि खानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुद्दतेकार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुर्बत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इकतसादी तरक्की का नजारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली बड़ी मईशत के तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया, सरकर्दा मईशतों के साथ बड़े तजारती समझौते किए और वो आलमी मामलात पर मजीद मौसर आवाज़ बनकर उभरा, जिसमें तरक्की, टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और आलमी जुनूब की तरजीहात भी शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भारत का सबसे तवील अरसे तक एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी, आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत और सबकी शमूलियत वाले और इक्तसादी तौर पर फाल भारत की उनकी दूर अंदेशी को खिराज तहसीन पेश किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक खत में कहा है कि ये हुसूलियाबी न सिर्फ जनाब मोदी के कई साल तक ओहदे पर रहने का नतीजा है बल्कि उस भरोसे और एतमाद का भी इजहार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अवाम ने उनकी कयादत के तई जाहिर किया है। उन्होंने भारत की काबिल जिक्र इक्तसादी और समाजी तब्दीली का भी खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दूरअंदेशी से बहुत से लोगों को भारत की सरहदों के पार तहरीक हासिल हुई है जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे ने एक जाती वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक मिसाली शख्सियत और कयादत की मिसाली शख्सियत करार दिया है। उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें अच्छी जिंदगी बख्शे जाने को एक हैरत अंगेज कारनामा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मरापे ने पापुआ न्यू गिनी की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वज़ीर-ए-आज़म कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में भारत आलमी मामलात में एक कायदाना आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एक मामूली पस मंजर से शुरू होने वाले सफर से 3 लगातार मुद्दतों तक 1 अरब 40 करोड़ लोगों के एक मुल्क की

0: मदद करने को उजागर किया और गैर मुल्की पॉलिसी, इक्तिसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मैदानों में भारत की इन अहम हुसूलियाबियों का जिक्र किया। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबी मुल्क की आजादी के बाद की तारीख में एक अहम लम्हा है। साबिक सदर जमहूरिया ने एक रोजनामे में लिखे गए एक मजमून में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि 2014 की अब तक की मुद्दत में हुक्मरानी, सियासत और अवामी बहस में हिंदुस्तानियत की जानिब एक फैसलाकुन तब्दीली देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम मोदी ने भारत की तहजीबी विरासत की शान में इजाफा किया है, उन्होंने जमहूरी रिवायात को उजागर किया है और कौमी इदारों में अवामी एतमाद को मुस्तहकम बनाया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्ण ने वजीर आजम मोदी को उनकी हुसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ओहदे पर रहने की ये मुद्दतकार महज वक्त की पैमाइश नहीं है बल्कि इससे मुद्दत के तरक्याती सफर में यकसर तब्दीली लाने वाले दौर की अक्कासी होती है। जनाब राधा कृष्णन ने यह भी कहा कि जिस तरह अब्राहम लिंकन ने गुलामी की जंजीरों से लाखों लोगों को आजाद कराया था, हालिया दिनों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को शदीद गुर्बत के शिकंजे से बाहर निकालकर लाखों कुनबों को सबकी शमूलियत वाली तरक्की, उम्मीद, मौके और वकार बख्शा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आजाद भारत के सबसे तवील अरसे तक मुसलसल मुंतखब होने वाले वजीर आजम बनने पर साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि ये कामयाबी काफी अहम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सियासी मुसाबकत, मखलूत हुकूमत की सूरत हाल और मीडिया की मुसलसल जांच पड़ताल के दरमियान हासिल हुई है। एक अंग्रेजी रोजनामे में अपने मजमून में जनाब नायडू ने स्वच्छ भारत, गरीबों के लिए मकानात, जनधन खातों, फवायद की बराह रास्त मुंतकली, यूपीआई अदायगी और आयुष्मान का सहरा नरेंद्र मोदी की क्यादत के सर बांधा। आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: इस मीटिंग में इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों और वजीर आजम समेत बीजेपी की आला क्यादत के शामिल होने की तवक्को है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकज ने मुल्क में देही तरक्की को आगे बढ़ाने के मकसद से 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने एमजी नरेगा के तहत 30,000 करोड़ रुपए पहले से ही मुख्तस किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम के अलावा रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 95,692 करोड़ रुपए की एक अबूरी रकम जारी की गई है। इसके साथ ही कुल रकम 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जनाब चौहान ने ये बात रियासती देही तरक्की के वजीरों की एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत के बाद कही। ये मीटिंग विकसित भारत जीरामजी पर अमल दरामद के बारे में थी। मुल्क में इस कानून का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की इस्लाहात अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है।

0: और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरेत मिनाब, बंदराबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें, अब अखबार के आईनी के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबार ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला, इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा इस संदेश के बाद।
3: अरे ये क्या?
4: एब्सोल्यूट
5: मेरी नई स्कूटी के लिए।
4: ओ बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी।
5: मतलब
4: सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा।
5: दादू बन गई सियानी।
4: गिफ्ट नहीं बोलेंगे आप?
5: स्कूटी।
4: आरबीआई कहता है इनसे सुनिए,
6: जानकार बनिए,
4: सतर्क रहिए।
7: हमारी जनगणना हमारा विकास।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
9: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
10: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
9: बुकिंग है तो संपर्क करें
11: 054-222-7600

0: 5 8
1: 0542227658।
2: प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: स्वागत करते हैं आकाशवाणी वाराणसी के सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा में। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और पहला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म सांवरिया से। कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में संगीत है समीर का, गीत के बोल हैं मोंटी के।

सांवरिया फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं रोमियो अकबर वॉल्टर से शब्बीर शेरगिल और शाहिद मालिया की आवाज़ों में। संगीत है सोहेल सेन का, गीत के बोल हैं अशोक पंजाबी के।

0: फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर का ये गीत आपने सुना। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से संदेश का।
1: देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म एक था टाइगर का ये गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में। इस गीत का संगीत है मिथिलेश मिश्रा का। फिल्म एक था टाइगर।

फिल्म एक था टाइगर का ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से नीरज श्रीधर और सुजान डीमेलो की आवाज़ों में ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत है प्रीतम का, फिल्म है अजब प्रेम की गजब कहानी।

फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म से राहत फतेह अली खां की आवाज़ में ये गीत।

आज का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छिछोरे से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, संगीत है अमिताभ भट्टाचार्य का और गीत गीत के बोल हैं प्रीतम के।

फिल्म छिछोरे से अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने सुना आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीत गानों का कार्यक्रम मधुरिमा समाप्त होता है।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।
2: का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
3: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए मथुरा और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
4: जनपद मथुरा के प्रभारी एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। यह बैठक वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान में आयोजित की गई। बैठक में 5 जून 2026 से 21 जून 2026 तक चलने वाले समय के जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों योजनाओं उपलब्धियों तथा जन सामान्य के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मंत्री संदीप सिंह ने गीता शोध संस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप सादगी

0: अनुशासन, ईंधन, बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को जनपद मथुरा में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जनपद में लगभग 6,17,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मथुरा के वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी DFO BS पटेल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से जनपद भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 25 प्रमुख धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ब्रज की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यहां धार्मिक कुंडों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए 406 ग्राम पंचायतों के तालाबों और 25 धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल के अनुसार जल को दूषित होने से बचाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान दुवासु परिसर में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और प्रभागीय वन अधिकारी DFO वेंकट श्रीकर पटेल शामिल हुए। यहां कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बेल, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने आम और DFO वेंकट श्रीकर पटेल ने शहतूत का पौधा लगाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दुवासु के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बताया कि
1: करीब 384 पौध को लगाया गया। अब हर बच्चे ने, हर फैकल्टी ने अपना माँ के नाम में पौध लगाया है और आगे वाला अगले साल तक उसका देखभाल करेगा।
0: मथुरा चटपट के राया निवासी युवा नेता और सामाजिक नीतीश पाठक ने प्रयागराज में आयोजित युवा संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्हें इस आयोजन में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। युवा संसद सत्र के दौरान नीतीश पाठक ने एक संसद सदस्य की भूमिका निभाते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उन्होंने नारी को माँ सरस्वती का स्वरूप बताया। पाठक ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रगति का आधार है। मथुरा जिला न्यायालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर में समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायाधिकारी गण द्वारा जनपद न्यायालय परिसर मथुरा में वृक्षारोपण किया गया। जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की अनीता सिंह द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वृक्षों की उपयोगिता के संबंध में बताया गया तथा सभी से अपील की गई कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें।
2: मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
3: जिले में इस महीने की शुरुआत जनपद वासियों को समय रहते मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल के साथ हुई। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देशन में जनपद में 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन आधुनिक स्टेशनों के माध्यम से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वायु दाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां वास्तविक समय में प्राप्त की जा रही हैं। इससे मौसम की सतत निगरानी संभव हो सकेगी तथा किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा या मौसम परिवर्तन की स्थिति में प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठा सकेगा। जनपद में स्थापित 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तहसील सदर कुंडा लालगंज पट्टी एवं रानीगंज में संचालित हैं, जबकि 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन विभिन्न विकास खंडों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनसमान से अपील करते हुए कहा कि मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा आपदा अथवा

0: खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम एवं वर्षा से संबंधित रियल टाइम डेटा उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम जन भी सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिले में इस महीने 15 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाली योग सप्ताह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस संबंध में परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 15 जून से 21 जून तक जनपद में योग सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने योग सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग्या अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित कराएं। तहसील ब्लॉक एवं जिला स्तर पर योग्या अभ्यास कराए जाने की समुचित व्यवस्था योगा संस्थाओं के साथ बैठक कर ली जाए, जिससे योग सप्ताह के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, जन प्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, समाज सेवी, व्यापारी व जनपद के अन्य गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधुओं का सामूहिक योग्या अभ्यास कराया जाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में बैठे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात भारत सरकार के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने समीक्षा बैठक के दौरान की। जनपद में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि गरीब, दलित, पिछड़े एवं वंचित लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार सिंह, संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पंचायत पहुता में इस महीने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 11वीं वाहिनी द्वारा आपदा प्रबंधन एवं बचाव को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना रहा। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन के उप निरीक्षक प्रभास सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रशासन एवं राहत एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के तरीके तथा आपातकालीन सहायता नंबरों की जानकारी भी। कार्यक्रम में सीपीआर देने की प्रक्रिया का डेमो करके दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने आकाशीय बिजली, डूबने से बचने आदि प्रबंध आपदा से बचाव के व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन भी किया, जिसे ग्रामीणों ने काफी रुचि के साथ देखा और जानकारी प्राप्त की।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़। न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेब्स ओटीटी पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। थाना कोतवाली अलीनगर जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार रीता देवी पत्नी उदल यादव निवासी ग्राम नीबूपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली, जो दिनांक 20 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 40 वर्ष, कद 4 फीट 10 इंच और रंग गोरा है। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं बताई गई है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप थाना कोतवाली अलीनगर जनपद चंदौली को सूचित कर सकते हैं या अपने नज़दीकी थाने से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में थाना कोतवाली बैरिया जनपद बलिया से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनाली साह, पुत्री शमशेर साह, निवासी ग्राम उपाध्याय

अध्यायपुर कोतवाली बैरिया जनपद बलिया, ये दिनांक 3/8/2025 से लापता हैं। इनकी आयु 17 वर्ष, कद 5 फीट और रंग गोरा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने बैगनी सूट और सफ़ेद जूता पहने हुआ था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना कोतवाली बैरिया जनपद बलिया को सूचित कर सकते हैं। थाना शहाबगंज जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती चमेली, पत्नी महादेव साहनी, निवासी शहाबगंज जनपद चंदौली की है, जो दिनांक 8 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु करीब 55 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया आप अपने नज़दीकी थाने या थाना शहाबगंज जनपद चंदौली को सूचित करें। इसी क्रम में थाना अलीनगर जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सितारा बानो, पत्नी अब्दुल कलाम, ये ग्राम रेवसा थाना अलीनगर जनपद चंदौली की निवासी हैं, जो दिनांक 30 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 25 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा बताया गया। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने हरे रंग का समीज, सलवार और नकाब पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना अलीनगर जनपद चंदौली या अपने नज़दीकी थाने को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर थाना ड्रम्डगंज के अनुसार शहनाज बानो, पुत्री बबलू, निवासी महुगढ़ी ड्रम्डगंज मिर्जापुर, ये दिनांक 29/4/26 से लापता हैं। इनकी आयु 18 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने लाल रंग का सलवार सूट पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर थाना ड्रम्डगंज या अपने नज़दीकी थाने को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त होती है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम सुबह 9:30 पर हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। तब तक प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम में आप समात फरमाएंगे जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका एक मकाला, बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू ज़बान का किरदार, और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब अब्दुस्सलाम सलाम फैज़ी। लेकिन सामईन, आज 10 जून है और आज का दिन मंसूब है वर्ल्ड आई डोनेशन के हवाले से। समात फरमाइए एक मुख्तसर तकरीर आँखों की अतिया का आलमी दिन। आँखें इंसानी जिस्म का सबसे अहम और ख़ूबसूरत हिस्सा हैं। आँखें सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि इन्हीं आँखों से मोहब्बत व नफ़रत और जज्बात व एहसासात का इजहार होता है। उर्दू शायरी में आँखों को बतौर इस्तियारा इस्तेमाल किया गया है। गुलाबी आँखें, हसीन आँखें, पुरकशिश आँखें और न जाने क्या क्या। गुलाब आँखें, हिजाब आँखें, यही तो हैं लाजवाब आँखें। इन्हीं में उल्फत, इन्हीं में नफ़रत, सवाब आँखें, अजाब आँखें। कभी नज़र में बला की शोखी, कभी सरापा हिजाब आँखें। कभी छिपाती हैं राज़े दिल को, कभी हैं दिल की किताब आँखें। वो आए तो लोग मुझसे बोले, वो आए तो लोग मुझसे बोले, हुजूर आँखें जनाब आँखें। अजीब था गुफ्तगू का आलम, अजीब था गुफ्तगू का आलम, सवाल आँखें जवाब आँखें। सामईन, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसकी आँखें बड़ी अहमियत रखती हैं। खालिक कायनात का करम व एहसान है जिसने हमें दो खूबसूरत आँखें दी हैं। ऐसी हसीन आँखें जिनसे हम कुदरत के नज़ारों का मुशाहिदा करते हैं। मगर ज़रा सोचिए,

0: नज़ारों का मुशाहिदा करते हैं, मगर ज़रा सोचिए हमारे इर्द गिर्द, हमारे शहर और हमारे गांव में, हमारे मुल्क में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आँखों की इस नेमत से महरूम हैं। वो पैदाइशी तौर पर या किसी हादसे का शिकार होने की वजह से नाबीना हैं। क्या उन्हें हक नहीं कि वो भी कुदरत के हसीन मनाजिर को देखें? क्या उनके दिलों में ये तमन्ना नहीं मचलती होगी कि वो भी अपने प्यारों की शक्ल सूरत को देखें? मारूफ शायरा आरफा शबनम की यह गज़ल एक ज़माने में बहुत मशहूर हुई थी। मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेडिकल साइंस तरक्की करके उस मुकाम पर है कि अगर कोई इंसान वसीयत कर जाए कि उसकी वफ़ात के बाद उसकी आँखें किसी नाबीना इंसान को लगा दी जाएं, यकीनन ये एक बेहतरीन समाजी अमल है। हमारी एक छोटी सी कोशिश से किसी की ज़िंदगी का चिराग रोशन हो सकता है। 10 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया जाता है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद ये है कि किसी इंसान की वफ़ात के बाद उसके कार्निया के अतिया की अहमियत को उजागर किया जाए। तो आइए आज के दिन यानी वर्ल्ड आई डोनेशन डे के मौके पर हम ये अहद करें कि हम सब इस मुहिम का हिस्सा बनकर किसी नाबीना की आँखों को रोशन करने का वसीला बनेंगे। सामिन, ये तो थी चंद बातें वर्ल्ड आई डोनेशन के हवाले से, और आइए अब रुख करते हैं मकाले की जानिब। उर्दू ज़बान के खमीर में हमेशा से ही अमन मोहब्बत की फ़ज़ा परवान चढ़ रही थी। उर्दू ज़बान ने हमेशा इत्तेहाद व मोहब्बत की गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका मकाला, बाहमी इत्तेहाद के फ़रोग़ में उर्दू ज़बान का किरदार।
1: अहले इल्म इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा बाहमी मेल जोल और इत्तेहाद व इत्तेफाक से हुई। मुख्तलिफ मजहब व कल्चर के मानने वाले, मुख्तलिफ इलाक़ों में रहने वाले और मुख्तलिफ पेशों के अफराद अरसे से एक मरकज़ पर आने की तमन्ना रखते थे। उर्दू उसी ख्वाहिश का समरा है। चूँकि ये ज़बान कौमी यकजहती की पैदावार है और उसका बीज मुश्तरक तहजीब में बोया गया है, इसलिए उसमें इब्तदाही से रंग बिरंगी तहजीब व माशरत की झलक मिलती है। उसकी इन्हीं खूबियों के सबब कृष्णचंद ये कहने पर मजबूर हुए, उर्दू अदब शुरू ही से एक मुश्तरक हिंद आर्यी तहजीब और कल्चर का गहवारा रहा है। उसकी तरवीज व इशात में हिंदुओं और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया है। उसने अपने दायरे में हर मजहब व मिल्लत, हर रंग व नस्ल के अफराद के महसूसात और जज्बात को समो कर उन्हें ऐसा अदबी रंग रूप अता किया है जिससे उस जबान के अदब और शायरी पर बाहमी मेलजोल, रवादारी, इत्तेहाद, महब्बत, अखुवत और कौमी यकजहती के जज्बों की गहरी छाप पड़ चुकी है। इन्हीं अनासिर की मौजूदगी ने उर्दू जबान के अदब को एक सेकुलर मिजाज अता किया है जो सारे हिंदुस्तानी अवाम के जमहूरी जज्बे से हमाहंग है। दिशंबर नाथ पांडे ने बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू ज़बान के किरदार का तذکرہ इंतहाई हकीकत आमेज़ लबो लहजे में इस तरह किया है, उर्दू तो इसी ज़मीन की पैदावार है जिसे गंगा जमुना की नदियाँ सैराब करती हैं। ये सही है कि मुसलमान सूफियों, दरवेशों और शायरों ने उर्दू का सिंगार किया, लेकिन सैकड़ों हिंदू अदीबों ने भी उर्दू को संवारने में हिस्सा लिया। अगर उर्दू में इस्लामी मजाहिब और कल्चर पर किताब लिखी गई तो आपको हिंदू मजहब और कल्चर की भी उर्दू में किताबें मिलेंगी। उपनिषद, भगवद गीता, पुराण, कालिदास के नाटक, पद्मावत, लीलावती, वैदिक गरज, मुश्किल से कोई हिंदू अदब का शोभा होगा जिसमें उर्दू की किताबें ना हों। उसका माजी हाल से अलग नहीं किया जा सकता। उसकी तारीख में हिंदू मुसलमानों की मेलजोल की कहानी है। उसमें हिंदू मुसलमान संतों ने उपदेश दिया है, साधु दरवेशों ने ईश्वर प्रेम का संदेश दिया है, शायरों ने उसमें वतन के शहीदों के लिए आंसू गिराए हैं, देशभक्तों के दिलों को हिलाने वाले गीत गाए हैं, मोहब्बत के राग लापे हैं। वो किस तरह हमसे जुदा हो सकती है? उसकी रगों में संस्कृत और प्राकृत का खून बहता है। ये यहीं फली फूली हिंदुस्तान की जबानों में ये अकेली जबान है جو صحیح معنوں میں ہندو مسلمانوں کی یکجہتی کی روایت کی ترجمانی کرتی ہے اور روایت

बहुत हुआ और रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, बेहतर है अपनी राह लो देखो मियाँ बहुत हुआ, बेहतर है अपनी राह लो देखो मियाँ बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़िया बहुत हुआ। और शेर समाज फरमाए कि लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें, लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें, यूं तो अदा फरीज़े हमसायेगा बहुत हुआ, यूं तो अदा फरीज़े हमसायेगा बहुत हुआ, और बुग्ज़ो अनाद की हदें पार तो कब की हो चुकी,

कारे जहां बहुत हुआ, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़िया बहुत हुआ, रक्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ। दूसरी गजल का मतलब समाप्त फरमाए। अर्ज क्या है कि बज़्मे यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, बज़्मे यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, तू भी है मौजे हवा, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, और अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकोश,

अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया कहरवां आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं अखिलेश कुमार विश्वकर्मा की आवाज़ में ये दादरा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत में अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया कहरवा और दादरा गीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म महान से। आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म महान से ये गीत आप सुन रहे थे, इसी कड़ी में आपको सुनवाते हैं शान फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर ने। संगीत है आर डी बर्मन का, गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के।

फिल्म शान से मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना ये बेहतरीन गीत। आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में ये गीत। इस गीत के बोल हैं नरेंद्र शर्मा के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म प्रेम रोग।

फिल्म प्रेम रोग से ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, जिसे संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

फिल्म याराना का गीत आप सुन रहे हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा है। आइए इसी कड़ी में अब सुनते हैं फिल्म फर्ज से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत, जिसके बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म फर्ज से।

फर्ज फिल्म का ये बेहतरीन गीत आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं फिल्म वक्त से मन्ना डे की आवाज़ में ये बेहतरीन गाना, जिसे संगीत दिया है रवि ने और गीत के बोल हैं शाहिर लुधियानवी के। फिल्म है वक्त।

आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में। मुकेश की आवाज़ है, संगीत है आनंद बख्शी का और गीत के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी के। फिल्म है हिमालय की गोद में।

हिमालय की गोद से ये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं फिल्म नया दौर से आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में ये गीत, जिसे संगीत दिया है ओपी नैयर ने और

फिल्म नया दौर का गीत आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं फिल्म प्रिंस से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म प्रिंस से।

प्रिंस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। अब सुनते हैं फिल्म नमक हलाल से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। इस गीत का संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म नमक हलाल।

0: नमक हलाल फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जो आधारित होगा श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्ति श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपके उन पसंदीदा गीतों के साथ हैं जिनके लिए आपने हमें ईमेल संदेश पहले से ही भेजा हुआ है। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इज्जत फिल्म के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। और इस गाने को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोताओं के नाम हैं, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से इस गाने को पसंद किया लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम

पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या साहू, आप सभी ने भी संदेश भेजा। इसी गाने को पसंद किया कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ने। रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ हनुमानगढ़ राजस्थान से।

पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी गाने को पसंद किया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। आप सभी ने हमें संदेश भेजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसाना का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से इस गाने को पसंद किया नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। आप सभी ने इस गाने को सुनना चाहा। पोटिया कला दुर्ग से इस गाने को सुनना चाहते थे संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। इसी गाने के लिए संदेश भेजा तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन। मजनू का टिल्ला दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहते थे कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हमें संदेश भेजा उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

पत्थर के सनम फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। और सच पूछे तो श्रोताओं, आपके बिना हम भी कुछ नहीं हैं। तो खैर, ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाया था हमने पत्थर के सनम फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गाने को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। गम्हरिया जमशेदपुर टाटानगर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से इस गाने को सुनना चाहते थे सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल।

इसी गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडलकर, शुभम वडलकर और पुन्नू वडलकर ने इस गाने को सुनना चाहा। इसी गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। गांव नथाना पंजाब से इस गाने के लिए संदेश भेजा हरजिंदर छिंद्रा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले ने। आप सभी ने हमें संदेश भेजा सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से। शिवाजी चौक कटनी से इस गाने को सुनना चाहते थे अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी।

कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन रजक, लालू सोना, मोना हनी और यश और उनके मनी मम्मी पापा ने इस गाने को सुनना चाहा। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा सुनील पाठक ने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। कोल सिटी बरका काना से इस गाने को सुनना चाहते थे अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक।

इसी गाने के लिए संदेश भेजा गणेश वाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। इसी गाने को सुनना चाहते थे गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने इस गाने को पसंद किया। दतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने इस गाने को सुनना चाहा। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा ने इस गाने को सुनना चाहा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से इस गाने को पसंद किया प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने इस गाने को सुनना चाहा। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने इस गाने को पसंद किया। पाकुड़ झारखंड से इस गाने को सुनना चाहते थे उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश प्राप्त हुआ। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू ने इस गाने को पसंद किया और इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य ने इस गाने को पसंद किया। सारिमपुर बक्सर से राजेश जी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने इस गाने को सुनना चाहा। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत अख्तर रोमानी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अख्तर रोमानी का लिखा हुआ ये गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं के नाम हैं, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने को सुनना चाहते थे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप,

अलका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का संदेश प्राप्त हुआ। जैन मंदिर वाली गुफा कुरावली से इस गाने को पसंद किया राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती सुरलकर का संदेश प्राप्त हुआ। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने हमें संदेश भेजा। खामगांव से इस गाने को सुनना चाहते थे अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाडे परिवार। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव और दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह का संदेश प्राप्त हुआ। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से इस गाने को पसंद किया बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार ने। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और बावड़ी से ही खुदा बख्श खलीफा। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से इस गाने को सुनना चाहते थे मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसरत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए संदेश भेजा पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबांश, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानूबी मुलानी, बादशाह मुलानी और पूरा मुलानी परिवार इस गाने को सुनना चाहते थे। इसी गाने के लिए संदेश भेजा पांडु चंदन ने। मलियान सरदाना मेरठ से इस गाने को सुनना चाहते थे अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन और आपके परिवार के सभी सदस्य। मंसूरी बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने इस गाने को पसंद किया। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया का संदेश प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ डोगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने इस गाने को सुनना चाहा। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है कामचोर। आवाजें किशोर कुमार और अलका याग्निक की, गीत इंदिवर का, संगीत राजेश रोशन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत

कामचोर फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में इंदिवर का लिखा यह गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी राजेश रोशन ने। और इस गाने को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोताओं के नाम है सकरडीहा चंदौली से इमरती यादव, करौतल होता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति और राहुल प्रजापति। इसी गाने को सुनना चाहते थे ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आप सभी का संदेश इस गाने के लिए हमें प्राप्त हुआ। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से इस गाने को सुनना चाहते थे जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और आपके परिवार के सभी सदस्य।

को पसंद किया अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर ने। ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एनरी, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और इनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी। जलालीपुरा वाराणसी से इस गाने को सुनना चाहते थे विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना प्रजापति, राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहते थे बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और इनके परिवार के सभी सदस्य।

फैज़ल इमाम मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया लेकिन आपने जगह का नाम नहीं लिखा है।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम है स्वामी, आवाज यशोदास की है, गीत अमित खन्ना का और संगीत राजेश रोशन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

स्वामी फिल्म का ये प्यारा संगीत अभी आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज में। गीत अमित खन्ना का था, संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने, और इस गाने को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। ग्राम लजोड़िया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी इसे गाने को सुनना चाहते थे। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत,

मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना और हशीना दिलसाद ने इस गाने को पसंद किया है।

लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। बदलापुरा मुंबई से विनोद वंडलकर ने इस गाने को सुनना चाहा। मुजफ्फरपुर से राजू कुमार का संदेश प्राप्त हुआ। तालुका खोपटी महाराष्ट्र से इस गाने को सुनना चाहते थे बंटू पोपलगट और चंद्रकला। गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान और बड़क चौहान। ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीलाल गुप्ता, लाल बिहारी सिंह, वीरा सिंह, आप सभी ने संदेश भेजा।

गाजीपुर नारी पचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा ने हमें संदेश भेजा।

बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुनील रमेश साहू, चंदापुर से दया शंकर यादव, प्रीति यादव और इनके परिवार के सभी सदस्यों का संदेश प्राप्त हुआ। और अब कार्यक्रम में अगला और अंतिम गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। आवाजें किशोर कुमार, आवाजें कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की है। गीत फैज अनवर का, संगीत नदीम शमर का।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गाना भी आपको सुनवा रहे थे। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज थी। फैज अनवर का लिखा ये गीत था जिसकी तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने, और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

फाजिल्का पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए संदेश भेजा आप सभी श्रोताओं ने पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, इजाद।

महाराष्ट्र से इस गाने को सुनना चाहते थे रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। इसी गाने को पसंद किया ग्राम बाघा मुड़ा कामा खान छत्तीसगढ़ से, प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, आप सभी ने संदेश भेजा लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। इसी गाने को सुनना चाहते थे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, तुलसी और दिशा गोस्वामी। इसके साथ ही दीजिए इजाजत कार्यक्रम समाप्त करने की। स्वस्ति श्रीवास्तव को, अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
1: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
1: जी विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
1: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
2: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को

0: भूनकर एक पेय बनाया
1: जी
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी,
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश जी?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी,
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
1: जी,
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी तीन चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
1: जी,
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी,
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें,

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
2: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

0: हिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
3: मतलब?
0: मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते

0: हुई ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
1: वांडी पेरियार?
0: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा,
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
1: अच्छा,
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है। और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह। और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी

0: अपनी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पहरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
7: हमारी जनगणना हमारा विकास।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए
11: 0542227658।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
6: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं डॉक्टर रेवती साकलकर। आइए इनकी आवाज में सुनते हैं ये भजन। रचना मीराबाई की है।

डॉक्टर रेवती साकलकर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित शारदा सहाय का एकल तबला वादन। आइए सुनें पंडित शारदा सहाय का तबले पर बजाया रूपक ताल।

अभी आप सुन रहे थे पंडित शारदा सहाय का तबले पर बजाया रूपक ताल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, जिस भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, इस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आइए सुन लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी गुड़िया, जिनके पिता का नाम है श्री अमरनाथ, पता है ग्राम आईनी मिश्र, थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 18 वर्ष, लंबाई 4 फीट 11 इंच, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र। थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार किस्मतिया देवी, जिनके पति का नाम है संजय कुमार, पता है ग्राम मझौली, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 35 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। घटना के समय इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री। रात 10:00 आपको सुनवाएंगे नाटक कर्फ्यू की रात, जिसके लेखक होंगे दंगोली कक्कड़, प्रस्तुतकर्ता होंगे किशोर कुमार। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 8:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 10वीं कड़ी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 हमारी आज की कलाकार होंगे डॉक्टर रेवती साकलकर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:31 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई गन्ने की फसल में सामयिक कार्य, इस विषय पर सुनेंगे वीरेंद्र कुमार सिंह से की गई बातचीत। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के गाए लोकगीत का। इन्हीं के गाए लोकगीत आपको दिन में 1:45 पर भी सुनवाएंगे। शाम 5:15 पर युवा साथी अपने कार्यक्रम युववाणी में सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और मार्गदर्शन के अंतर्गत युवा साथी सुनेंगे प्रोफेसर प्रशांत कुमार की वार्ता, जिसका विषय होगा सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए करियर के अवसर। दिन में 2:30 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और अब से थोड़ी ही देर में यानी 1:15 पर बहने अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में गीत संगीत जायका और सेहत ज्ञान के साथ ही सुनेंगी पुष्पा

अंजलि शर्मा से नेहा गुप्ता की बातचीत, जिसका विषय होगा ग्रीष्म ऋतु में कैसा हो आहार। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: गए हैं।
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में रियासत में मुजोविजा सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट की पेशरफत का जायजा लिया और जरूरी अहकाम दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है।
1: वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाकई कौमी इम्तिहान एजेंसी के सदर दफ्तर का दौरा किया और 21 जून को मुजव्वजा नीट की री एग्जाम की तैयारियों का जायजा लिया। सदर दफ्तर के बाहर उन्होंने सहाफियों से बातचीत भी की। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
4: सखियों के साथ,
5: सखियों के बाद,
4: सखियों के जज्बात,
5: गृहलक्ष्मी।
6: कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों बहनों को आपकी रेडियो दोस्त सुखदा पालद्दे का प्यार भरा नमस्कार और संध्या आपको भी मेरा नमस्कार।
7: सुखदा आपको भी मेरा नमस्कार और हमारी सखियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सुखदा जी कैसी हैं आप?
6: मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी सखियाँ भी बहुत अच्छी होंगी। संध्या देखते हैं ना, अब किसी से भी हम बातचीत करते हैं, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो शुरू में सबसे पहले जो बात करने का जो तरीका होता है वो हम कैसे करते हैं, आप कैसी हैं, एक सवाल जरूर पूछते हैं।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
6: आप कैसी हैं या आप कैसे हैं?
7: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सुखदा जी। अब देखो ना, आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी तो ऐसे ही की है ना।
6: हाँ, और कहते हैं ना, एक प्रभावशाली बातचीत के लिए शिष्टाचार सक्रिय श्रवण, यानी कि सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना और उसका सकारात्मक रूप से उत्तर देना। किसी भी अजनबी या परिचित से बातचीत की शुरुआत हमेशा आप कैसे हैं या किसी सामान्य प्रसंग, जैसे कि अभी देखो गर्मी का मौसम चल रहा है तो मौसम के हिसाब से या फिर माहौल के हिसाब से शुरू करते हैं ना।
7: बिल्कुल सही कहा। और देखिए ना, जैसा भी हो ना, व्यक्तियों को देखा है ना जिनसे आपको केवल हाँ या ना का ही उत्तर मिलेगा, या यूं कह लेना कि उन्हें ज्यादा बोलना ही नहीं पसंद है, या कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं और अपने ही प्रश्न भी करते हैं और अपने ही उत्तर भी दे देते हैं।
6: अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपनी बात ही नहीं कहें बल्कि सामने वाले की बातों को भी पूरी एकाग्रता से सुने, ध्यान से सुने और तब सोच समझकर उसका उत्तर दें। तुमने तो सुना ही होगा ना संध्या कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि तोलो और फिर बोलो।
7: हाँ बिल्कुल। अरे ऐसा बोलिए कि आपकी बातों का ना मान भी रख जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। एक चीज और ऐसे क्यों, बातचीत के दौरान अपना ध्यान जो है ना मोबाइल फोन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो है ना उससे इरिटेट हो जाता है कि देखो हम तो बातचीत कर रहे हैं और ये फोन पे ही लगी।
6: लगता है कि इसका तो ध्यान भी नहीं है कि हम बातें कर रहे हैं और ये मतलब कहीं और गुम है बंदा, है ना। तो आपकी आवाज में जो है वो मिठास होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, जिससे सामने वाले को सम्मान भी मिले और किसी से भी उसके निजी जीवन से संबंधित, जैसे कि उसकी शादी, तलाक या आय से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत सवाल सीधे नहीं पूछना चाहिए।
7: और सखियों कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति की ना बुराई भी ना करें। वो कहते हैं ना कि भरोसा बनाने में बहुत कम समय लगता है लेकिन टूटने में एक क्षण भी नहीं लगता है। भले ही आप किसी से सहमत हो या ना हो उनके विचारों से, लेकिन उनका सम्मान करें और किसी को भी अपमानित आहत ना करें।
6: और बात को ना एकदम रबड़ के जैसा खींचना नहीं चाहिए। स्पष्ट बात कीजिए और संक्षिप्त में बात कीजिए, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश करें ताकि दूसरे व्यक्ति को समझने में आसानी हो और बातचीत में उत्साही रहें, ये दूसरे व्यक्ति को

0: उत्साही बना देगा। जैसे कि आप किसी से अगर कोई सवाल पूछते हैं या कुछ भी विषय पर चर्चा अगर हो रही है, तो बहुत उत्साहवर्धक रूप से पूछिए या उत्साहवर्धक रूप से उनसे बात कीजिए, जिससे जो सामने वाला होगा ना वो भी कहेगा अरे ये तो बहुत एक्साइटेड है, मैं भी एकदम से बताऊंगा। तो ये जो चीजें उत्साहित होना चाहिए और बातचीत को और अधिक दिलचस्प भी बना देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और सखियों, आजकल ना नया दौर चल गया है, देखते हुए ये कहना सही होगा ना कि आप भी नए विचारों के लिए खुले रहें और दूसरों के दृष्टिकोण को सुनने के लिए भी तैयार रहें, और ये समझने में भी मदद कर सकता है ना कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। अगर आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो सवाल पूछने में संकोच मत कीजिए, और सवाल पूछने से आप बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं। और आप ये भी जान सकती हैं कि दूसरे व्यक्ति के विचार क्या हैं, वो हमारे विषय में या उनके विषय में क्या सोच रहे हैं।
0: बिल्कुल। देखिए संध्या, आपने कहीं कहीं सुना भी होगा, कहीं लिखा भी होता है स्लोगन वगैरह कि कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 0542227658।

0: 2227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ,
0: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: संध्या, बहुत गर्मी है ना, और ऐसे में लगता है कि केवल और केवल पानी ही पिया जाए, लेकिन पानी पीकर ही तो पेट नहीं भरना है ना। और इन गर्मियों में हमारा आहार कैसा हो, कैसा हमें खाना खाना चाहिए, कोई सुपाच्य खाना खाना चाहिए, तो क्यों ना आज हम इसी चर्चा पर आधारित सुनवा देते हैं अपनी सखियों को ये बातचीत, जिसका विषय है ग्रीष्म ऋतु में कैसा हो आहार विहार। और बातचीत कर रही हैं पुष्पांजलि शर्मा से नेहा गुप्ता।
3: नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, ग्रीष्म ऋतु में सूरज की किरणें भी तीखी होती हैं, हमारी धरती भी तप रही है, तो ऐसे में हम सभी को अपना बेहतर ख्याल रखने की जरूरत है, ताकि हम हमेशा तरोताजा महसूस कर सकें। आज हम ग्रीष्म ऋतु में कैसा हो आहार विहार, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट पुष्पांजलि शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच।
3: पुष्पांजलि जी, जैसे ही पारा चढ़ रहा है, लोग बाग बाहर भी निकलते हैं, घर में भी काम रहता है, आजकल लोगों को थकान की समस्या बहुत हो रही है। खाना भी खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काम करने के बाद वो थक जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, रेस्ट की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
4: नेहा जी, आपको पता ही है कि 5 तत्व मिलके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो इसमें से अगर कोई भी तत्व एक बैलेंसिंग है हमारी बॉडी में, इन 5 तत्वों को मिला करके एक बैलेंस किया गया है, और इसको अगर हम डिवाइड करें सरल शब्दों में समझने के लिए, तो वात पित्त और कफ, ये 3 का बैलेंस होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों में से अगर एक भी डिसबैलेंस होता है तो हम बीमार पड़ते हैं, थकावट महसूस करते हैं, तरह तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। तो हमें ज़्यादातर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन तीनों में से किसका रेशियो कम हो रहा है और किस माध्यम से हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है।
3: आपने कहा इन तीनों का संतुलन होना जरूरी है, तो अब एक व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि इन तीनों में से किस चीज की स्थिति थोड़ी बिगड़ी है और हमें उसी पर ध्यान देना जरूरी है?
4: जी, जैसे गर्मियों में हमारे शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। पहले के टाइम में बहुत ही हम शुद्ध वातावरण में रहते थे, आज के टाइम में इतना पॉल्यूशन, इतना प्रदूषण हो चुका है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करता है वो हमारा AC और कूलर। हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की पानी को सोख लेता है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो गर्मी में भगवान ने भी उसी हिसाब से हमें भोजन की व्यवस्था की है, आप जाड़े में खीरा ना खा करके गर्मी में खाइए, जो मौसम के अनुसार जो चीजें मिल रही है आप उसका सेवन ज्यादा करें, और उस चीज में जैसे पसीना बहुत ज्यादा होता है तो आप पानी का ज्यादा सेवन करें, साइट्रिक फल लें, नींबू ज्यादा सेवन करें, तो इससे आपको पता चलेगा, जैसे कि अभी सर्दी जुकाम हो रहा है तो उस टाइम विटामिन सी का हम ज्यादा यूज करेंगे, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पित्त की कमजोरी हमारी हो रही है, इसलिए हमें सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहा है। लो BP जो रक्तचाप गिर जाता है, उस टाइम हमें नमक का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जब पसीना बहेगा तो आपका सोडियम बाहर जाएगा, तो उस टाइम पता करने के तरीके अपने आप समझ में आने लगते हैं, जैसे बीमार हम होते हैं उसी तरीके से हमें उसका सिम्टम समझ में आने लगता है।
3: जी, क्या गर्मी में ऐसा कोई तरीका है कि अपने शरीर को थोड़ा, उसको कहें कि अंदर से सुरक्षित किया जा सके या नमी बनाए रखी जा सके, कुछ ऐसा तरीका है?
4: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल तरीका है नेहा जी, क्योंकि हमने आपको कहा ना कि ईश्वर ने भी हमें उसी हिसाब से चीजें दी हुई हैं। गर्मी में आम क्यों होता है कभी हमने सोचा? और ठंड में आंवले का सेवन हम ज्यादा करते हैं, आंवला ही क्यों हुआ, गर्मी में आंवला होना चाहिए। तो जब ईश्वर ने उस चीज से हिसाब से हमें चीजें दी हैं, तो हम उस सेवन को क्यों नहीं कर पाते हैं? तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जिस मौसम के हिसाब से जो फल आ रहा है, जैसे सब्जियों में भी लौकी का सेवन, नेनुआ आ गया आपको, ये सब चीजें, परवल है और बोड़ा है, भिंडी है, ये सारी चीजें हमें बैलेंस करके रखती हैं, हमारे अंदर पानी की जो मात्रा है वो बराबर करती है, तो इसका ज्यादा सेवन करें। और जैसे गेहूं हो गया, रोटी हो गया, ये तभी जब ज्यादा खाएं जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, जितना कम ठोस पदार्थ लें और जितना तरल पदार्थ ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा हम बैलेंस रहेंगे और अंदर से भी हमें ऊर्जा मिलती
3: रहेगी। आप कह रहे हैं कि तरल पदार्थ हमें ज्यादा लेने चाहिए, तो क्या हम सुबह की जो शुरुआत है, जैसे ही हम स्नान करके आते हैं, तो उसकी शुरुआत भी हमें तरल पदार्थ से ही करनी चाहिए अपने नाश्ते में, या कुछ और हम खा?

0: सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल। पहले के टाइम में हम देखते थे कि जब हम सुबह गांव वगैरह में, आज भी रिवाज है कि हम जूस से स्टार्ट करते थे। उस जूस मतलब आज के टाइम में लोग वो डब्बे वाला जूस लेकर के आते हैं और उसको पी करके, गन्ने का जूस आपने सुना होगा कि
0: जी
1: गन्ने का जूस भूजा, या फिर हम दही का शरबत बनाते थे, आजकल उसको छाछ और लस्सी का नाम दिया जाता है। तो हम स्टार्टिंग ही इस चीज से कर सकते हैं ताकि हम ऊर्जान्वित रहें पूरे दिन।
0: गर्मी में खाने का जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए? कई लोग एक बार खा लिया तो सोचते हैं कि अब सुबह खा लिया तो सीधे शाम को आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या ये तरीका ठीक है या कोई और तरीका अपनाया
1: नहीं
0: जाए?
1: नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तभी आज के टाइम में सब 90% लोगों के पेट निकले हुए हैं, तो उन बाहर निकले हुए हैं, वो कहते हैं हम कम खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारा फूड हैबिट्स जो है वो गलत होने की ही वजह से आजकल ये सारी परेशानियां आ रही हैं। तो आपको नाश्ता, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना चाहिए, दोपहर का खाना नॉर्मल खाना चाहिए, और रात का खाना जितना हो सके अवॉइड करें अगर आप 30+ हैं तो। अगर रात का खाना अवॉइड करेंगे और सुबह का नाश्ता आप अच्छे से लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी हेल्थ बहुत सही हो जाएगी और आप पूरे दिन एनर्जी फील करेंगे और बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। मेरा मेरा भी मानना है, और पहले के बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, मैं पहले बार बार इस चीज को वो करती हूँ, क्योंकि पहले की लाइफस्टाइल वाकई में बहुत अच्छी थी और आज के टाइम में हम वापस फिर उसी ढर्रे पे आ रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल राजाओं की तरह करें, दोपहर का खाना एक आम आदमी की तरह, और रात का खाना गरीबों की तरह, कि अगर ना भी मिले, भूखे पेट भी सोना हो तो हम इत्मीनान से
0: तैयार
1: सो
0: रहें।
1: जाए। हाँ
0: जी,
1: बिल्कुल
0: आपने कहा कि दोपहर का खाना सामान्य होना चाहिए। आमतौर पर दोपहर का जो खाना होता है उस थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, चटनी, दही सब होता है। उसे कहले सतरंगी, पचरंगी, सब कुछ होता है।
1: जी।
0: तो क्या ये ठीक रहेगा या इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता
1: नेहा
0: दिखती
1: जी,
0: है?
1: ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी कि आप किस एज ग्रुप के हैं, आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, या आप कितने वेट के हैं, आपको कितना रिड्यूस करने की जरूरत है या गेन करने की जरूरत है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हम सब पे एक रूल फॉलो नहीं करा सकते उनको। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, एक्टिविटी कम है, तो आप कोशिश करें कि खिचड़ी खा लें, दो अनाज को मिक्स ना करें। हमारे यूपी में कार्बोहाइड्रेट्स थालियों, दाल
0: जी
1: रोटी सब्जी सब
0: सब्जी
1: एक
0: से,
1: साथ
0: हाँ
1: खाना है,
0: चावल
1: ऐसा
0: भी।
1: कुछ
0: जी
1: नहीं है। आप देख लीजिए कि आपकी एक्टिविटी क्या है, अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो अगर आप पचा सकते हो, खा सकते हो, उसके बाद काम कर सकते हैं तो बिल्कुल आप खाएं। और इनफैक्ट मैं तो मना ही करती हूँ कि तीनों पचाने की क्षमता आज के डेट में किसी के पास नहीं है फिर वो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, भोजन वही सबसे अच्छा होता है जिसको खाने के 2.5 घंटे बाद आपको भूख लग जाए। अगर भूख नहीं लग रही है, दैट मीन्स कि वो भोजन आपको सूट नहीं कर रहा है, वो आपके लिए उचित नहीं है। और 6 घंटे के बाद भी अगर अनइजीनेस फील हो रहा है, कच्ची डकार आ रही है, गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, दैट मीन्स कि वो फूड आपको नहीं लेना चाहिए, या तो फिर उसकी क्वांटिटी कम करें। ये भोजन का सबसे अच्छा रूल है।
0: आपने कहा कि कब्ज और अपच की समस्या से
1: जी
0: लोग परेशान हो जाते हैं, गर्मियों में और हो जाते हैं,
1: जी
0: तो क्या कोई तरीका है जिससे वो इससे निजात पा सकें
1: बिल्कुल।
0: अगर ऐसा हो गया तो?
1: अगर आपको सत्तू सूट करता है तो आपको चने का सेवन ज्यादा करना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और प्लस इसको बोलते हैं स्क्रब है, ये पेट के लिए स्क्रबर का काम करता है। जैसे स्क्रब करके हम किसी चीज को बड़े अच्छे से साफ कर सकते हैं, ये इंटेस्टाइन को स्क्रबिंग कर देता है। भुजा शाम को खा सकते हो आप, और नींबू का सेवन थोड़ा ज्यादा करो ताकि बैलेंस बना रहे बॉडी में आपके।
0: जी, ये तरीके हमें
1: जी
0: अपनाने होंगे।
1: जी
0: रात में लोग बाग दूध पसंद करते हैं, तो इस मौसम में दूध का सेवन ठीक है?
1: गर्मियों में दूध नहीं लेना चाहिए, दही का सेवन ज्यादा करना चाहिए। दूध लेंगे, हम ये सोच करके दूध लेते हैं कि सुबह हमारा मोशन क्लियर होगा, पेट साफ होगा, हमें कब्जियत नहीं होगी। गर्मियों में ये रूल फॉलो नहीं होता। आप ठंड में ले, वाकई में हेल्प करेगा, गर्मियों में ये नुकसान पहुंचाता है। और फिर वही बात कि डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी कि किस बॉडी में किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है।
0: जी, इतना कुछ आपने खाने के ऊपर बताया है, श्रोताओं को जरूर पसंद भी आ रहा होगा। ऐसे में कितना वर्कआउट किया जाए गर्मी के दिनों में ताकि बॉडी ठीक रहे और आपकी जो क्षमता है वो मेंटेन रहे?
1: जी, योग की अगर मैं बात करूं तो आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। 3-4 ब्रीदिंग प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इसमें एक साथ में नेति की क्रिया कर सकते हैं सुबह उठ करके। बहुत सारे माध्यम हैं, सोशल मीडिया है, जो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करा देंगी, या फिर आपके पास कोई नोन टीचर हो तो आप उनसे सीख लीजिए नेति, जला नेति की क्रिया वो करिए। उससे क्या होता है कि जो पूरे दिन का पॉल्यूशन होता है वो सुबह करने से निकल जाता है। अगर वीक में 2 बार नेति की क्रिया जरूर करनी चाहिए, और भ्रामरी कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। साथ में आप सुबह वॉक जरूर स्टार्ट करिए। इस समय अगर हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा। या तो हम वर्कआउट करने के बाद हम उस चीज का ध्यान रखें कि हमें उतना पानी पीना है, उतना बॉडी में आपको जल की मात्रा को बैलेंस कर लेना है, इनफैक्ट आप

0: वॉक करके और ये करके भी फिट रह सकते हैं।
1: शरीर में ऑक्सीजन हमेशा बना रहे, क्या इसके लिए प्राणायाम ही करना ठीक है या कुछ और किया जा सकता है?
0: नहीं, प्राणायाम तो सबसे बेस्ट है, उसके अलावा तो और कुछ भी ऑक्सीजन को उतना प्रॉपर आप नहीं कर पाओगे जितना प्राणायाम में किया जाता है। और ब्रीदिंग वैसे भी अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो अपने बैक को स्ट्रेट करके, सीधे मुद्रा में बैठ करके, हम अक्सर झुक करके बैठने वाली आदत होगी।

0: ये हम अक्सर झुक करके बैठने वाली आदत हो गई है, तो स्पाइन हमारा कर्व हो जाता है, इस वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन माइंड तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमारी आदत आज के डेट में ये अपनानी चाहिए कि जब भी हमें याद आए तो हम सीधे बैठें और आराम से 10 से 15 बार ब्रीथ करें, ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल करके काउंट करके फिंगर्स पे। तो इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी मूड थोड़ा हल्का हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं तो उससे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में पहुंच जाती है। तो उसी तरीके से ये अलार्म लगा करके रखें कि हमें सीधे बैठ करके 10 to 20 times ब्रीदिंग करनी है, और धीरे धीरे जैसे ही आपके हैबिट में आ जाएगा आप देखेंगे कि बहुत ही रिलैक्स फील करोगे आप।
1: जी, ये बात तो आप वर्किंग लेडीज़ के लिए या वर्किंग लोगों के लिए कह रही हैं। जो लेडीज़ घर पर हैं उन्हें भी कई बार कमर दर्द की समस्या बहुत होती है,
0: जी
1: एड़ी में दर्द हो जाता है उन्हें, चाहे वो खाएं ठीक ठाक भी या आप जो कह रही हैं कि प्राणायाम भी करती हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की समस्याएं हो रही हैं उनको। तो क्या इससे निजात पाने का क्या कोई तरीका है?
0: जी मैं हर उस घरेलू महिला को जो घर संभाल रही है मैं बोलूंगी कि कम से कम उनको 1 घंटे का वक्त अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, और अगर वो प्राणायाम कर रही हैं तो थोड़ा बहुत उनको वर्कआउट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि आज के टाइम में हम अगर आधुनिक किचन की बात करें तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं कि हमें फिजिकल एक्टिविटी का बहुत चांस नहीं मिल पाता है। हमारे पास ओवन हो गया, हमारे पास मिक्सर है, हमारे पास पहले के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ें होती थी,
1: सिल ओढ़ा
0: सिलबट्टा
1: था
0: होता था,
1: जी,
0: जाता होता
1: हाँ
0: था, ओवन नहीं होता था तो हम बहुत सी चीज़ें
1: चूल्हा,
0: सोचते
1: हाँ
0: थे कि
1: बहुत सी
0: तुरंत
1: चीज,
0: भाई
1: हाँ
0: गरम करा फिर खाया या बना करके उसी टाइम टू टाइम। तो अब हम क्या करते हैं, प्रिजर्व चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, सुबह बना करके रख दिया, शाम को वही यूज़ कर रहे हैं। तो आज के टाइम में घरेलू महिला की बात किया जाए तो मैं 90% मैं खुद हाउसवाइफ हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कि कुछ ऐसी इजी चीज़ें हो जाएं जिससे कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, अपना टाइम भी थोड़ा अपने लिए निकाल पाऊँ। तो मैं उनसे बोलूँगी कि गर्मी में सबसे पहले वो ताज़ा खाना बनाने की कोशिश करें, 1 घंटा लगता है, बहुत टाइम नहीं लगता है, आप उसी हिसाब से चलें। गर्म भोजन हमेशा आपको भी फायदा पहुंचाएगा और लोगों को भी फायदा पहुंचाएगा, और थोड़ी आपकी एक्टिविटी भी बीच बीच में होती रहेगी। दोपहर में बिल्कुल नींद से ना सोएं, दोपहर में सोना बिल्कुल वर्जित करें, 1 घंटे का रेस्ट लें, नैप लें, ना कि पूरी अच्छे से नींद लें, वो हमेशा आपको परेशान करता है। और जितना हो सके उतना एक्सरसाइज, अगर 1 घंटे का टाइम में अगर 35 मिनट्स भी आप अपने लिए निकालते हो तो इनफ है। छोटे मोटे एक्सरसाइजेज आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, आप सीख सकते हैं। सेतु बंद आसन एक है, मैं हर महिलाओं को रिकमेंड करूंगी कि सेतु बंद आसन वो जरूर करें कमर दर्द के लिए। इसमें खाने से पहले या खाने के बाद का कोई रूल नहीं है, आप उसको सर्च कर लें और सेतु बंद आसन कम से कम 1 मिनट तक करें, इससे आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा।
1: जी, गर्मियों में ओआरएस का सेवन बहुत लोग करते हैं।
0: जी
1: ओआरएस वो बाजार से ले आते हैं, चाहे वो किसी तरह का पाउडर होता है या पेय पदार्थ
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो घर में क्या ऐसी कोई विधि है जिससे वो बनाकर तैयार कर सकते हैं? पूरे दिन भर अगर उसका सेवन करते हैं तो उन्हें
0: जी
1: वो ठीक लगे?
0: मैं नेहा जी एक आज योग में एक आयुर्वेदा में एक पानी यूज करते हैं हम लोग, उसको ORS से कहीं ज्यादा वो बेनिफिट है। आप 1 लीटर पानी में रात में मिट्टी के बर्तन में 1 लीटर पानी में एक खीरा काट करके मीडियम साइज का, और उसमें एक नींबू गोल गोल स्लाइसेस में काट के थोड़े से मिंट के पत्ते डाल दें और रात भर उसको छोड़ दें, फिर सुबह वो पूरे दिन यूज करें, फिर उसको फेंक के फिर दोबारा ये पानी बना लें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीपी लो लग रही है तो आप उसमें 1 चम्मच शहद और नींबू डाल करके पी सकते हैं, वो और टेस्टी हो जाता है वो पानी। उसमें अदरक भी आप यूज करें, थोड़ा सा अदरक घिस करके डाल दें, ये पानी पूरे दिन आपको रिफ्रेश रखेगा। आप चाहें तो इसको बॉटल में बंद करके आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, इससे आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस रहेगा, साथ में वेट रिड्यूस भी होता रहेगा।
1: जी, पुष्पांजलि जी, आप आकाशवाणी स्टूडियो में आई और इतनी उपयोगी जानकारी आपने सुनने वालों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: थैंक यू जी।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी बातचीत। बातचीत का विषय था ग्रीष्म ऋतु में कैसा हो आहार। बातचीत कर रही थी पुष्पांजलि शर्मा से नेहा गुप्ता। सुधा जी, देखा ना आपने कितनी अच्छी जानकारी दी हम लोगों को, हमारी सखियों को भी। और गर्मियां भी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो आज हमारी सखियों को आप क्या बता रही हैं रेसिपी?
1: बिल्कुल, आज मैं यही बताऊंगी कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठंड गर्मियों के दिन में आप नींबू पानी पी सकते हैं, आम का पन्ना है और शिकंजी है। तो आज मैं अपनी सखियों को जो है शिकंजी के ही विषय में बता देती हूँ कि ये एक ताजगी भरा मसालेदार और भारतीय नींबू पानी है ना, और इसमें मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद का बेहतरीन संतुलन होता है। और इससे पता है संध्या जी, बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगता,
0: बिल्कुल
1: बहुत कम
0: सही है।
1: समय में ये बन जाता है। तो सखियों, फटाफट अपनी डायरी उठाइए और नोट कीजिए इसकी सामग्री: 2 कप ठंडा पानी या फिर सोडा, 2 ताजे नींबू,

0: से तीन बड़े चीनी स्वादानुसार, कभी किसी को ज्यादा लगता है किसी को कम लगता है तो अपने हिसाब से कीजिए। फिर आधा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर जो होता है, और 1/4 चम्मच चाट मसाला, बर्फ के टुकड़े, पुदीने की पत्तियां और नींबू के टुकड़े सजाने के लिए, है ना।
1: बिल्कुल सही ही बताया। और सब क्यों, अब आप ले लीजिए जो है ना एक बड़ा सा जग और एक कलछुल भी ले लीजिए, और उसमें पानी ले लीजिए 2 गिलास ठंडा पानी, और उसमें नींबू के रस को जो है ना बीज निकाल करके गाड़ दीजिए। उसमें फिर चीनी, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर है, चाट मसाला है, ये सारी चीज़ें जो है खूब अच्छे से घोल लीजिए। और जब ये घुल जाए ना तो इसे पानी या सोडा में ही मिला के जो है आप बर्फ ढक के टुकड़े डाल सकती हैं। उसमें जो है थोड़ी पुदीने की पत्तियां भी डाल दीजिए, और गिलास को सजाने के लिए ना थोड़ा सा कट करके जो है नींबू भी लगा दीजिए ना, तो स्वाद आएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। जहां हमको 1 गिलास पीना होगा ना शिकंजी में, हम लोग 2 गिलास पी लेंगे, क्यों सकता
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल, देखिए हमारी शिकंजी भी बनकर तैयार हो गई है। और ऐसा कौन होगा संध्या जी जो घूमने न जाए, मतलब जिसको पसंद ना हो कहीं बाहर जाना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो हर कोई ये चाहता है कि हम कहीं ना कहीं टूर बनाएं, कहीं के कोई सी टूर पे जाएं, कोई यात्रा करें। तो ट्रेवलिंग के जरिए जैसे हम देश और दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और कई तरह की जानकारी भी हासिल करते हैं। यात्राओं के जरिए हम जगहों की संस्कृति की, वहाँ का खान पान, वेशभूषा, इन सब बातों से परिचित होते हैं। और यात्राओं के लिए जितना ज़रूरी है धैर्य वो प्लानिंग है, उतना ही बहुत जरूरी है भाई आपका
1: बिल्कुल
0: बजट।
1: सही कहा सुंदर जी। जब बजट रहता है ना तो कम बजट में हम ज्यादा से ज्यादा घूम भी लेते हैं और कम समय में भी, और सारी चीजें ना योजनाबद्ध रहती है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। पहले से ही हम टिकट करा लें और सारे सामान की पैकिंग भी खूब अच्छी तरीके से कर लें, जो भी हमारी आईडी प्रूफ है या मेडिसिन वगैरह, इनको अलग अलग पाउच बना के रखा जाए ना, क्यों सुंदर
0: लेकिन
1: जी।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चले तो जाते हैं लेकिन फिर अरे ये भी चीज रखना था, वो भी
1: हाँ
0: रखना था। तो सखियो सबसे पहले आप कहीं भी अगर किसी टूर पर जा रही हैं तो सामान के लिस्ट बना लें, उसके बाद आप पैकिंग करें। और जैसे कि संध्या जी ने बताया कि अगर आप फ्लाइट से या ट्रेन में जा रही हैं तो टिकट एडवांस में ही बुक करा लेनी चाहिए, है ना, जिससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। और पैकिंग के वक्त चीज़ों को सही से रखें ताकि बैग में जगह बन जाए, और अपने डॉक्यूमेंट भी साथ रख लें। और डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही होटल भी बुक कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो।
1: बिल्कुल सही। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही हम अपना लगेज ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ऐसा ना हो कि हम जा रहे हैं उधर गर्म स्नान में खूब सारे कपड़े रख लें तो भारी भी हो जाए और मज़ा भी सारा किरकिरा हो जाए। तो इस सब चीज़ों का ना हमें बहुत ध्यान रखना है। और आजकल ना देखिए ट्रेवल जो है इंश्योरेंस भी हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आता है कि हम लोग यहीं भी घूमते हैं, विदेश भी घूमने चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और घूमने घूमने में ही ऐसा ना हो ना कि अपने घर का ध्यान भूल जाए, तो इसलिए जो है अपने घर का भी ध्यान रखना चाहिए, घर की सारी चीजें बंद करके और अच्छे से रखना चाहिए, और हो सके ना तो अपने घर पे किसी ना किसी को जो है रख के भी जाना चाहिए, क्यों
0: भाई
1: सुंदर
0: ये
1: जी।
0: तो आपने बहुत सही बात कही कि कहीं अपने घर को अभी खाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए, किसी ना
1: बिल्कुल
0: किसी सुरक्षित,
1: हाँ
0: मतलब
1: बिल्कुल,
0: सुरक्षा के दृष्टि से।
1: सुरक्षा की दृष्टि से भी, और पेड़ पौधे भी लगे होते हैं ना तो उनको पानी देने वाला भी हो, कि हम चले तो जाए पता लगा हमारे पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं, और हमारे घर की सुरक्षा की दृष्टि से, जिससे हम यात्रा भी खूब सुखद रूप से कर सकें।
0: बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि जब हम कहीं जाते हैं तो मौसम का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उस वक्त तो बहुत ज्यादा जब आपके साथ में छोटे बच्चे हों,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: सही।
0: तो ट्रेवलिंग पर जाते समय अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनकी जरूरतों का सारा सामान, पता नहीं बाहर मिले ना मिले, कहाँ मिले, आपको जगह नहीं पता है, तो उनकी जरूरतों का जितना भी सामान है वो आप अपने साथ रख सकते हैं,
1: हाँ एक बात और
0: और
1: है सुविधा
0: उनकी
1: जी, ये हाँ ये तो सारी
0: दवाइयाँ।
1: चीजें हो गई, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ना कि ऑनलाइन के समय है तो हम लोग ऑनलाइन नहीं, हमें थोड़ा कैश भी रखना चाहिए। कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है जिससे कि हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और कैश भी नहीं रहता ना तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो हमें कैश भी कुछ जो है अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर हम उसको भी इस्तेमाल कर सकें और ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकें।
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि कोई भी ट्रिप अचानक से नहीं बनाना चाहिए, करीब उसको बनाने के लिए 15 दिन का समय लीजिए, तब आपकी जो ट्रिप है वो भी आपकी खुशनुमा होगी और आप भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यहाँ घड़ी टिक टिक कर रही है और
1: बिल्कुल
0: हमें कह रही है दीदी जी अब अलविदा लीजिए। तो अपनी सखियों को हम कहते हैं अलविदा। सखियों हम आपको अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक अपनी रेडियो दोस्त सुखदा
1: और
0: और
1: संध्या का
0: को
1: प्यार
0: दी
1: भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अखिलेश कुमार विश्वकर्मा। सबसे पहले इनके स्वर में आइए सुनते हैं कहरवा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के गाए लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे कहरवा। अब आइए सुनते हैं लोक भजन।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के गाय लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इनका गाया निर्गुण।

अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के गाए इस निर्गुण गीत के साथ ही लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।

0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
1: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
3: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
3: अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय

0: रख सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे। इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसमें क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम

0: ने अगले तीन दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत का ये संगीतमय सफर लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह। बस अपनों का साथ हो, हर पल अपने पास हो, दूर रहने पर भी अपनों का एहसास हो, यही तो है परिवार। आज बातें होंगी परिवार की और साथ ही कुछ गीत भी सुनेंगे हम।

कहते हैं ना, जिसके पास अच्छा परिवार होता है उनकी जिंदगी सबसे अच्छी कड़ी है। शायद इसीलिए कई लोग अपने परिवार से कुछ ज्यादा ही प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन कई लोग अपने परिवार से हजारों मील दूर रहते हैं और हर समय अपने परिवार को याद करते रहते हैं।

वक्त जैसे ठहर गया है यही, हर तरफ एक

इंसान जब दिन भर काम की थकान से चूर हो जाता है तो शाम को अपने परिवार के पास ही आता है। घर के लोगों से बात करके उसके दिन भर की थकान दूर हो जाती है। परिवार आपके चेहरे पर लाख मुसीबतों के बाद भी हंसने की एक वजह लेकर आता है। परिवार किसी भी व्यक्ति की लाइफलाइन होती है। हमारे भारतीय समाज में तो प्राचीन काल से ही परिवार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है।

परिवार के सदस्य हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। कई बार कुछ बातों को लेकर घर के सदस्यों के बीच थोड़ी कहासुनी और नोक झोंक भी हो जाती है, पर परिवार तो आखिर परिवार ही होता है। हर कोई एक दूसरे को प्यार और खुशी देना चाहते हैं। बेशक ये भावना हर किसी के मन में होती है, लेकिन थोड़ी कहासुनी के बाद या फिर शर्मीला स्वभाव होने की वजह से इस प्यार को बयां करना थोड़ा मुश्किल लगता है।

दुनिया ढूंढ ली, नहीं मिला सुकून का ठिकाना, घर ही है सबसे अच्छा आशियाना। सारे शहर भटक कर अब है ठाना, सारा समय घर वालों के साथ है बिताना। तो अब कुछ बातें कुछ गीत के संगीत में सफर को यही विराम देते हैं इस अंतिम गीत के साथ। तो अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, डीटीएच न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म माँ और ममता का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 14 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आरोग्यम का विषय है सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 11 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर परामर्श के लिए हमें फोन कीजिए गुरुवार यानी 11 जून को 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, तो कीजिए हमें फोन और

0: सुनते रहिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म मन से। इस गीत को लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है संजीव दर्शन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं शान और कैलाश खेर की आवाज में फिल्म फना से। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीतकार जतिन ललित।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चैरमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का प्रोग्राम युववाणी।

0: थोड़ा डूबेगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा।
1: उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो इन मोटिवेशनल लाइन के साथ स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में, और मैं हूं आज की आपकी रेडियो दोस्त नेहा,
0: और मैं हूं प्रगति।
1: आप सभी को हम दोनों का
0: नमस्कार।
1: चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: तो दोस्तों आज की बात की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो हमें ये एहसास कराता है कि दुनिया की असली ताकत उसकी विविधता में छिपी है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हमारी पहचान है, लेकिन इन्हें जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है संवाद।
6: बिल्कुल सही कहा नेहा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज यानी 10 जून को मनाया जाता है सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस का मकसद विभिन्न देशों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है।
5: दोस्तों इसकी शुरुआत 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित

0: करके हुई थी। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस 10 जून 2025 को विश्व स्तर पर मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अगर हम जाने तो ये है कि मतभेदों का समाधान टकराव से नहीं बल्कि संवाद और आपसी विश्वास से निकलता है। जब लोग एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को समझते हैं तो शांति और भाईचारे की भावना मजबूत होती है।
1: आज के समय में जब दुनिया तकनीक के माध्यम से पहले कहीं अधिक जुड़ चुकी है, तब सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। यह हमें विविधताओं का सम्मान करना और एक दूसरे से सीखने की प्रेरणा भी देता है।
0: और दोस्तों, भारत स्वयं विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण है, जहां अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां सदियों से साथ साथ विकसित होती रही हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है।
1: इसीलिए आज का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि संवाद केवल बातचीत का माध्यम नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और वैश्विक शांति की आधारशिला भी है।
0: बिल्कुल, आइए हम एक सभी के साथ मिलजुल कर ये दूसरों का सम्मान भी करें, उनके विचारों का भी सम्मान करें और उसके साथ में संवाद की संस्कृति को अपनाएं और एक ऐसे समाज के निर्माण में अपना योगदान दें जहां विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बने और उसके साथ में पहचान भी कहला सके। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत भी।

0: तो दोस्तों चलिए अब इस गीत के बाद अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे कार्यक्रम युववाणी में हम हमेशा युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही दिशा के बारे में बतलाते हैं और जो योग्यताओं के उनके आधार पर आगे बढ़ने की जो भी सुविधाएं हैं उसके बारे में भी हम उन्हें अवगत कराते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ आज हमारा मार्गदर्शन का विषय है सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए करियर के अवसर, जिसे यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आए हैं जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर प्रशांत कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं BHU में। तो चलिए सुनते हैं ये मार्गदर्शन।
1: दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युवाड़ी के इस खास सेगमेंट मार्गदर्शन में। आपके साथ मैं हूँ मोनिशा। दोस्तों इस सेगमेंट में हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे विषय जो आपके करियर, आपकी सोच और आपके भविष्य को नई दिशा देने का काम करते हैं। और आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों बहुत से युवा हैं जो 12वीं में आर्ट्स लेते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताबें रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और फिर घर में कोई ना कोई पूछ ही देता है, बेटा इस सब्जेक्ट का आखिर होगा क्या, इसमें नौकरी मिलनी है कि नहीं। और ये सवाल सुनकर कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, कुछ अपना पैशन छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस यह कोई कमजोर विकल्प नहीं है। यह वो विषय है जो आपको इंसान को, समाज को, व्यवस्था को समझना सिखाता है और जो समाज को समझ ले उसके लिए इस दुनिया में बहुत सारे विकल्प हैं। और आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं प्रोफेसर प्रशांत कुमार जी। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं और वर्षों से समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को दिशा और प्रेरणा आपने दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मोनिशा जी कार्यक्रम में मौका देने के लिए। मैं आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: मार्गदर्शन की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि सामाजिक विज्ञान में आखिर होता क्या है, मतलब इसमें बहुत बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बहुत से युवा इसे सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी तक ही सीमित मानते हैं।
2: समाज विज्ञान मूल रूप से मोनिशा जी समाज को दशा दिशा देने वाले सारे विषयों का एक संयोग है। उसमें सिर्फ समाज शास्त्र या इतिहास नहीं, उसमें समाज कार्य भी है, मनोविज्ञान भी है, भूगोल भी है, राजनीति विज्ञान भी है, लोक प्रशासन भी है। जैसे आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लें तो हमारे संकाय में 7-8 मास्टर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और उसके अलावे बहुत सारे अंत अनुशासनिक विषय भी हैं, है? जैसे मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, समाज कार्य है, लोक प्रशासन है। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को लेके समाज विज्ञान की दशा दिशा आज की तारीख में तय हो रही है।
1: जी सर, ये धारणा है कि आर्ट्स या सोशल साइंस इसमें बच्चे के पास करियर बहुत सीमित है और खासकर आज के समय में, जैसे आप कैसे देखते हैं, क्या सच में विकल्प बहुत सीमित है या फिर बहुत ब्रॉड है?
2: नहीं नहीं 21वीं शताब्दी की अभी जो वर्तमान दशक है और जो वैश्वीकरण के बाद की जो दुनिया है मोनिशा जी, उसमें आप देखेंगे कि समाज विज्ञान के विषयों का अहिरनेस विकास हुआ है और उसमें बहुत सारे नए तरह के करियर ऑप्शंस भी हमारे सामने खुलते हैं। ये एक बहुत ही निर्मूल धारणा है जिसका कि खंडन मैं पुरजोर तरीके से यहाँ करता हूँ कि सिर्फ समाज विज्ञान के क्षेत्रों में सीमित करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं और हमारे पास सिर्फ सिविल सेवा या सिर्फ जो है शोध या टीचिंग में जाने का एकमात्र विकल्प है। इसके अलावे भी हमारे पास करियर के बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, विकास के क्षेत्र में, एनजीओ के क्षेत्र में, नए बदलती हुई परिस्थितियों में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्षेत्र है, जो कई तरह के लोक नीतियों के बारे में जो विकसित भारत की का संकल्पना हमारी सरकार कर रही है उसके आधार पे, और भी कई सारे ऑप्शंस मीडिया के क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं डेटा के क्षेत्र में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज विज्ञान पे क्या असर प्रभाव पड़ रहा है नीति विशेषज्ञ के तौर पे, और भी जो कई सारे विषय है मुद्दे पर्यावरण से लेके शहरीकरण से लेके ग्रामीण विकास तक की चुनौतियों के, उन सब क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं करियर की और पूरी दुनिया में अवसर मौजूद है, भारत तो छोड़ दें आप।
1: सर जैसे कि कोई बच्चा जब 12th पास आउट होता है और इस विषय से आगे बढ़ता है तो जब वो ग्रेजुएशन में जाता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से विकल्प उनके लिए उपलब्ध

0: है जो उनको मार्गदर्शन दे सके और सही दिशा में उनको सही रोजगार भी दिला सके।
1: सामान्य तरीके से आप देखेंगे तो हमको लगेगा कि 12वीं में कॉमर्स, जो अमूमन तीन तरह के,
0: जी
1: साइंस,
0: कॉमर्स
1: कॉमर्स
0: आर्ट्स,
1: और कला और समाज विज्ञान के क्षेत्र में, तीनों में करियर के ऑप्शन हैं। और ये बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ कि अवधारणा बहुत ही अक्सर जो है प्रमाणों पर आधारित नहीं होती है कि कला और समाज विज्ञान के क्षेत्र में सीमित करियर ऑप्शन होते हैं। मेरा मानना है कि 12वीं के बाद जो हमारे युवा साथी कला और समाज विज्ञान क्षेत्र में जाने की अपेक्षा रखते हैं, वो दिन प्रतिदिन अपने सॉफ्ट स्किल पे अगर कार्य करें, जिसमें कि लेखन का कौशल है ना, सार्वजनिक रूप से बोलने का कौशल हमारे सामने मौजूद है, कंटेंट राइटिंग कैसे की जाती है, और उसके साथ साथ जो उभरते हुए क्षेत्र हैं समाज विज्ञान में, जैसे डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से कला और सामाजिक परिवेश पे असर पड़ रहा है, मानविकी के विषयों पे उसका क्या असर पड़ रहा है, अगर उन क्षेत्रों में वो अपनी विशेषज्ञता बनाए। आजकल एक उभरता हुआ विषय आपको मैं साझा करूं, डिजिटल ह्यूमैनिटीज का
0: जी
1: है ना। और उसके अलावा एक नए तरह का भी कार्यक्रम क्षेत्र हमारे सामने मौजूद प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें कि लोक नीति के आधार पे पब्लिक पॉलिसी में किस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन और विकास का कार्य है, अब उसमें सरकार और जनता के बीच की भागीदारी के बीच जो तमाम दूरियां थी उसको पाटने का कार्य किया जा रहा है। तो विकास की चुनौतियों को किस तरह से और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए किस तरह से एक नई नीति की घोषणा हो, उसमें कहीं ना कहीं करियर के और ऑप्शन हैं। तो उसके लिए अगर हमारे युवा अपने आप को तैयार कर पाए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कटिंग एज रिसर्च है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, अगर उसके बारे में वो संज्ञानात्मक, और यही वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखेंगे कि इन सब विषयों पे बचपन से ही, प्राथमिक कक्षाओं से ही अब पढ़ाने का और उसपे एक प्रबोधन कार्य क्रिएट करने
0: जी
1: का काम किया जा रहा है।
0: जी सर, एक ना सोसाइटी में कह ले और बच्चों में एक डर बैठा दिया गया है कि सोशियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो आगे कोई भविष्य नहीं है, उनमें बहुत सीमित माध्यम से ही उन तक पहुंच पाते। लाइक 12 तक तो हम पढ़ते हैं, आर्ट्स में जाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम कुछ ऐसा कोर्स करें जिसमें ज्यादा पैसे मिल सके। इसमें अमूमन का मानसिकता ये रहती है कि इसमें पैसे बहुत कम है, तो ये भ्रम कैसे दूर हो, सही मार्गदर्शन को कैसे मिल सके।
1: आई थिंक मैंने कई बार आपसे ये बात साझा की और आपके बहाने मैं अपने सारे युवा दर्शकों को, श्रोताओं को, साथियों को, उनके अभिभावकों को भी ये
0: जी
1: चीज साफ करना चाहता हूं कि करियर के लिहाज से और पैकेज के भी लिहाज से, किसी भी दृष्टि से, विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र से एक पैसे या एक रत्ती भर की भी कमी कला और समाज विज्ञान के क्षेत्र में नहीं है। आपको फिर कहूंगा कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो विकास की, असमान विकास की जो पूरी दुनिया में चुनौतियां मौजूद आई हैं, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हुए हैं, जलवायु परिवर्तन से लेके जो तमाम दुनिया में शहरीकरण की, ग्रामीण अल्प विकास की, स्वास्थ्य की, पोषण की, इन सब तरह के जो विषय हैं, महिला सशक्तिकरण
0: जी
1: की और समान विकास की दुनिया में जो चुनौतियां हैं, उन सब क्षेत्रों में अपार अवसर हैं काम करने के। आपने देखा होगा कि अभी जो जितनी भी नियुक्तियां आती हैं, अगर आप देखेंगे तो साइंस और तकनीक से कम नियुक्तियां समाज विज्ञान या कलाओं में नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र की किसी भी सरकार की नियुक्तियों को देखें, राज्य सरकारों की नियुक्तियों को देखें, जिसमें कि उच्च शिक्षा से लेकर समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अपार अवसर है। उसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शोध के बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे शोध के ग्रांट भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारे अवसर, असीमित अवसर हमारे पास प्रस्तुत होते हैं।
0: जी आपने भी जिक्र किया कि सरकार में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें ये बच्चे जा सकते हैं, तो सवाल ये होता है कि क्या जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें ही सीमित है या फिर प्राइवेट में भी इनका फ्यूचर है।
1: जैसा कि मैंने आपसे पहले भी मोनिशा जी कहा कि अभी तो आप देखेंगे कि भारत में 6 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं,
0: जी
1: और उन 6 लाख कंपनियों में आज की तारीख में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे उनको समाज कार्य से लेके सामाजिक विकास के अपने क्षेत्र में काम करने पड़ते हैं। उन सब लोगों के लिए पब्लिक पॉलिसी के विशेषज्ञ की, विकास विशेषज्ञों की, जो लोक नीति में, जो समाज शास्त्र में, जो राजनीति शास्त्र में जो निपुण है, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर स्थानीय राजनीति तक की समझ है, जिसके पास नीति, लोक प्रशासन की समझ है, विकास की चुनौतियों की समझ है, जो जलवायु परिवर्तन से लेकर पर्यावरण परिवर्तन तक के प्रभावों का, या जो सामाजिक असर जो विकास की नीतियों का हो रहा है, या किस तरह से और भी महत्वपूर्ण पहल या पहलकदमी करने की, इनिशिएटिव लेने की सरकार द्वारा जरूरत है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, कॉरपोरेट सेक्टर में भी अपार अवसर मौजूद है समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए।
0: जी सर, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हर काम में AI अपना सहभागिता दे रहा है, ऐसे में इस क्षेत्र में AI की क्या भूमिका है, क्या ये सच में बच्चों को ये पीछे धकेल रहा है या फिर उनकी हेल्प कर रहा है जॉब कंसीडर करने में।
1: आपने बेहद रोचक प्रश्न पूछा मोनिशा जी।

0: मैं चाह ही रहा था कि इस पे कुछ बातचीत अपने युवा दर्शकों से किया जाए इस बारे में।
1: जी
0: आप देखेंगे कि जब जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो हमें लगता है कि कुछ वो ऐसे जैसे कि कुछ विज्ञान या तकनीक के कुछ जटिल चीजों से उसका लेना देना है, ऐसा नहीं है। अंत में कोई भी तकनीक अपने सामाजिक प्रभाव से ही जानी जाती है और उसका किस तरह से मानवीय जीवन पर असर होता है। और कृत्रिम मेधा के इस दौर में आप देखेंगे कि हमारे

0: कि आप देखेंगे कि जिस तरह से नए कंटेंट क्रिएटर्स की और एक नए तरह के सामाजिक प्रभाव और सामाजिक मीडिया का जिस तरह से उन्होंने बढ़िया इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, वो काबिले तारीफ है कहीं न कहीं अपने व्यक्तिगत जीवन के उन्नति से लेकर सामाजिक उत्थान तक
1: जी जी और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे नए फील्ड्स आ रहे हैं इस क्षेत्र में, और जो कॉलेज का बच्चा है जो अभी भी बस ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको नहीं पता कि आगे क्या करना है, कैसे उसके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, और उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है और तरीके का डर भी रहता है, तो उस बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, एक मार्गदर्शक के तौर पे और एक जिसको कहते हैं कि कैरियर के काउंसलर के तौर पे मैं 7-8 कैरियर ऑप्शंस की परिकल्पना आपके सामने रखना चाहता हूँ।
1: जी,
0: प्रथम दृष्टया तो किसी भी स्नातक के विद्यार्थी के लिए जो पहला इस क्षेत्र में क्षेत्र खुलता है वो है लोक सेवा का, सिविल सेवा का। कम से कम आप देखेंगे कि केंद्र के स्तर पे 5 से 10 हजार लोक सेवक, और उसके अलावे अलग अलग पदों के आधार पे और राज्य सेवाओं के अलग बहुत बड़ी संख्या है जिसमें कि लोक सेवाओं में वो जा सकते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि IIT और एम्स से निकले हुए ग्रेजुएट भी अपने सिविल सेवाओं के ऑप्शनल के तौर पे सामाजिक विज्ञान के विषयों को प्राथमिकता देते हैं, और वो इसलिए भी कि बाद के दिनों में जब वो प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं इन विषयों के अध्ययन से जो प्राप्त उनकी एक सामाजिक समझ बनती, राजनीतिक समझ बनती, वो बहुत काम आती है। उसके अलावा दूसरे करियर ऑप्शन के तौर पे उच्च शिक्षा में शोध है ना, शिक्षण का कार्य है स्कूल से लेके विश्वविद्यालय के स्तर पे, उच्चतर शिक्षा के स्तर पे। तीसरा जो करियर ऑप्शन है वो मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव क्षेत्र में है। चौथा जो करियर ऑप्शन है आपके सामने विकास का, जो बड़ा एक क्षेत्र है, INGO का, NGO का, UNDP है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WHO है, भारत में इतने ज्यादा NGO काम कर रहे हैं। अब तो आप देखेंगे कि जो विकास की पूरी गतिकी है उसमें सरकार और सिविल समाज, जो लोग हमारा जो नागरिक समाज है, दोनों की एक भूमिका विकसित हुई है। पांचवा जो आपको करियर का ऑप्शन दिखाई देगा वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तमाम जो कॉरपोरेट्स हैं हमारे जिन्होंने सामाजिक असर और विकास के जो कार्य हैं उसमें उनके पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ की, लोक प्रशासन के विशेषज्ञ की, लोक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ के तौर पे, डेटा एनालिस्ट के तौर पे, सोशल इम्पैक्ट के असेसमेंट के तौर पे, असेसर के तौर पे, और भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, डेवलपमेंट प्रोफेशनल के तौर पे, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान के तौर पे, या सोशल ज्योग्राफी या सामाजिक जो आपका विकास का जो पैमाना है जिसका सामाजिक असर क्या हो रहा है किसी विकास प्रकल्प का, इन सब तरह के अध्ययन और अध्यापन और शोध से जुड़े हुए कार्यों में, और उसके अलावा विकास कार्यकर्ता के तौर पर भी करियर के उनके सामने ऑप्शन है। इसके अलावा उभरते हुए क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे उनके पास करियर के ऑप्शन के तौर पे जो कृत्रिम मेधा है, डेटा एनालिटिक्स है, सोशल एनालिटिक्स है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज है, ये सब जो नए उभरते हुए विषय है उसके विशेषज्ञ के तौर पर भी वो कार्य कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी वो कार्य कर सकते हैं। तो एक अपार हमारे सामने संभावनाओं का क्षेत्र विकसित होता हुआ और खुलता हुआ दिखता है अभी हमारे सामने।
1: आपने मेंशन की इतने सारे फील्ड्स के बारे में, और अमूमन क्या होता है कि बच्चों को उतनी जानकारी नहीं होती, तो इसमें इंटर्नशिप या फिर फील्ड वर्क किस हद तक काम आ सकते हैं, और बच्चों को क्या इसमें जाना चाहिए, किससे पहले पढ़ाई करनी चाहिए?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया मनीषा जी, और अभी हाल के ही दिनों में आपके संज्ञान में ये बात होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर से लागू की गई है 2020, और उसके तहत जो स्नातक के 4 वर्षीय कार्यक्रम है उसमें इंटर्नशिप अनिवार्य है हर एक छात्र को, छात्राओं को करना, और उसमें ज्यादातर इंटर्नशिप इसी सब विषयों पे हो रहे हैं। आजकल हम लोग भी उसके मेंटोरशिप का काम कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया कि कहीं ना कहीं जो फील्ड वर्क का अनुभव है, जमीनी क्षेत्र का ज्ञान है, जो जमीनी समझ है किसी भी विकास प्रकल्प की, समाज के अलग अलग तबकों तक, सामाजिक समूहों तक, जाति निर्जाति लैंगिक समूहों तक किस तरह से असमान विकास या विकास की किस तरह से न्यायपूर्ण अवस्था पहुंचे, उसके लिए जो समझ बनती है वो फील्ड अध्ययन से, क्षेत्र अध्ययन से मिलती है। तो उसे भी आपको कहीं ना कहीं देखना है कि वो सब उस फील्ड के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आता है।
1: सर, जो बच्चे MA या MPhil या फिर PhD करना चाहते हैं, इसमें उनको कौन कौन से स्किल्स उनके पास होनी चाहिए और क्या इसका प्रोसेस रहेगा आगे?
0: मेरी समझ है कि सबसे जो जरूरी उसमें स्किल है वो तो एक है कि आप का अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो, कहीं ना कहीं आप प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के आधार पर एक अपनी समझ बना सकें क्षेत्र को लेकर, अपने क्षेत्र अध्ययन को लेकर। दूसरी कि आपके पास अच्छी वाचन और वादन शैली हो, सार्वजनिक रूप से आप पब्लिक स्पीकिंग में, पब्लिक राइटिंग में कंटेंट आपका बढ़िया हो, वो एक तरह का आप अच्छा लिख सकें, अच्छा बोल सकें, ये एक अनिवार्य सॉफ्ट स्किल की तरह है। हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का एक विशेष ज्ञान बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। उसके

0: अलावे जो तकनीक उभरते हुए तकनीक है, SPSS, पाइथन, तमाम जो डेटा साइंस के नए नए तकनीक हैं, उन सब चीजों पे भी अगर विशेषज्ञता वो हासिल कर पाए तो वो उनके करियर को कई गुना असीमित रूप से वैश्विक रूप से विस्तार देने में बहुत मददगार साबित होगा।
1: जी सर, एक इसके स्टूडेंट पे एक प्रेशर होता है, लाइक जो इंजीनियर्स है, जो डॉक्टर्स है, उनको तो बहुत प्रेजर मिलता है, लोग सोसाइटी बहुत उनको मानती है, लेकिन इन्हें लोग अमूमन मतलब थोड़ा
0: हे
1: हाँ,
0: दृष्टि
1: है
0: से आप
1: दृष्टि
0: इस
1: से देखना
0: हिसाब से
1: पसंद करते
0: मुझे,
1: हैं, उतना इज्जत नहीं देते हैं, तो इस प्रेशर को बच्चे कैसे हैंडल करें?
0: देखिए मैंने पहले भी कहा है कि, और ये आपने बहुत इसको कहते हैं दुखती रग पे हाथ छेड़ने वाली बात कही, मैं हमेशा से एक सवाल और सवाल के बहाने एक जवाब के तौर पे भी सवाल को जिसको कहते हैं पूरे सार्वजनिक जीवन में ये प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि आइंस्टाइन होना अगर महत्वपूर्ण है तो टैगोर होना कम महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद होना कम महत्वपूर्ण है? ये सोचने वाली बात है कि
1: जी
0: अगर अगर कोई डॉक्टर या कोई अभियंता अगर अपने तकनीक के या ज्ञान के माध्यम से समाज की बीमारियों की या किसी तरह के समस्याओं का समाधान का प्रयत्न करता है तो एक समाज विज्ञान का, एक जैसे मैं शांति अध्ययन का छात्र हूँ और अध्यापक भी हूँ, तो हम लोग इसी सवाल के साथ जूझते रहते हैं पूरे जीवन भर कि दुनिया में शांति क्यों जरूरी है, शांति को कैसे प्रश्रय दिया जाए। क्या आपको लगता है कि ये कम महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने, जब आपके सामने ईरान से लेके इजराइल तक के संघर्ष मौजूद हैं, दुनिया में चल रहे हैं? तो इस प्रश्न का जवाब भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कहीं ना कहीं कि हम इस प्रश्न को तलाश कर पाए कि आखिर युद्ध होते क्यों हैं और युद्ध क्यों नहीं होने चाहिए,
1: जी
0: है ना? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने अनुशासन पे, अपने डिसिप्लिन पे गर्व का भाव हमें होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सारे उन विद्यार्थियों तक और उनके अभिभावकों तक को भी ये स्पष्टता के साथ उद्घोषित करना चाहता हूं कि कहीं से भी हमारा अनुशासन कमतर नहीं है किसी से, और जीवन और जगत से जुड़े हुए कम महत्वपूर्ण सवालों से वो नहीं टकराता है। जो हमारे जीवन के सबसे मौलिक प्रश्न है कि हम लड़ते क्यों हैं, हमें प्रेम या शांति या करुणा के साथ क्यों रहना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब भी हमारे सामने खोजा जाना चाहिए। और ये काम हमारा है और हम इसको बखूबी निभा रहे हैं।
1: सर, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स में एक डर बना रहता है कि नहीं, अगर बच्चा इस फील्ड में जाता है तो इसका क्या भविष्य रहेगा, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चों को आगे में उनको भेजे और वो डर उनमें ना डाले?
0: ये मैं आपके माध्यम से उन सारे अभिभावकों को और उन युवा दोस्तों को भी ये बहुत स्पष्टता से उद्घोषित करना चाहता हूँ कि ये निर्मूल भय है कि आपके बच्चों के करियर ऑप्शन समाज विज्ञान के क्षेत्र में कहीं से भी किसी भी फील्ड से कमतर है। हाँ, मैंने फिर पहले भी कहा कि जरूरत यह है कि हम उसको अपने ज्ञान की कमी के तौर पे ना स्वीकार करें, है ना? ज्ञान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तो सभी जगह मौजूद है। अपने स्किल को लेके, अपने ज्ञान को लेके स्पष्टता का बोध हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेके एक अनुशासन के साथ कार्यबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए, तो मेरा मानना है कि किसी भी फील्ड से ज्यादा करियर के ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। और वो रत्ती भर भी ना घबराएं, उभरते हुए क्षेत्रों में, दुनिया में तकनीक और समाज का क्या असर एक दूसरे पे पड़ेगा, इसके अध्ययन की और इसके क्षेत्र के विशेषज्ञता के तौर पे हमारी यानी कि समाज विज्ञान के अभ्यर्थियों की हमेशा से जरूरत रहेगी और भविष्य में इसकी संभावनाएं और विकसित होंगी।
1: जी सर, अब समय की थोड़ी कमी हमारे पास, तो मेरा अंत में आपसे एक ही सवाल रहेगा कि जो बच्चा इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: आपके माध्यम से मोनिशा जी, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमारा काम कहीं ना कहीं ये जानना है कि हमें कैसे, कितना, कब और कहां और किस तरीके से वितरित किया जाए जो हमारे पास सामाजिक रिसोर्स हैं, जो हमारे सामाजिक संसाधन हैं, जो हमारे विकास के लक्ष्य हैं, और कैसे हम उसको अच्छे तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, करुणापूर्ण तरीके से सबको साथ लेके, जो हमारी सरकार का भी मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका
1: सबका विकास,
0: विकास, तो उन सब चीजों को लेके किस तरह से जो उभरती हुई वैश्विक चुनौतियां हैं उसके बीच हम अपना कैसे एक सहयोगपूर्ण वातावरण निर्मित कर पाए, उसके लिए कला और समाज विज्ञान और मानविकी के विषयों की हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और आपके माध्यम से मैं अपने सारे युवा साथियों और उनके अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले कई दशकों तक भी समाज विज्ञान के क्षेत्र की उपादेयता और उसकी उपयोगिता बदस्तूर जारी रहेगी, उसको लेके वो निर्मूल भाव से, अखंड निष्कंठ भाव से अपना कार्य करते रहे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा साथी इसे सुन रहे होंगे, उन्हें इससे काफी हद तक उनकी जो परेशानियां हैं, उनका जो कंफ्यूजन है, वो दूर हुआ होगा। आपने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन
0: बहुत
1: दिया,
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत
0: मोनिशा
1: धन्यवाद
0: जी,
1: सर जी।
0: आपको भी,
1: जी
0: और आपके बहाने मैं चाहता हूं कि पूरे आकाशवाणी के दर्शकों तक ये बात जाए कि समाज विज्ञान की जय जय हमेशा रहेगी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों आज के इस मार्गदर्शन सेगमेंट में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।

0: तो अभी आपने सुनी ये बातचीत, जो कि विषय था जिसका सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए करियर के अवसर, जिसे प्रस्तुत करने के लिए हमारे कार्यक्रम में थे प्रोफेसर प्रशांत कुमार। अब चलिए, कार्यक्रम में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और अब पेन और डायरी के साथ हाजिर हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे आज के यू डायरी के शब्द। तो हमारे आज के यू डायरी के शब्द में हमारा हिंदी का शब्द है विसंगति, जिसका अर्थ होता है बेमेल, असहमति, विरोधाभास या सामान्य नियम से भिन्न हो, जब दो बातों, तथ्यों या परिस्थितियों के बीच कोई मेल न हो या उसमें अप्रत्याशित अंतर हो, तो उसे विसंगति कहा जाता है। जैसे सरकारी दस्तावेजों में पाई गई विसंगति के कारण कई कर्मचारियों का वेतन अटक गया।
1: और इसी के साथ हमारा आज का इंग्लिश का वर्ड है जुबिलेंट। इट इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस, जॉय और ट्रायम्फ, स्पेशली बिकॉज ऑफ ए सक्सेस और विक्ट्री। और अगर मैं इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं द जुबिलेंट फैंस चीयर्ड लाउडली व्हेन देयर टीम वन द चैंपियनशिप मैच। और अब बारी आ गई है हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, हम आपको आज की एक और महत्वपूर्ण चीज नोट करवा दें, जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमें पता है कि आप उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो चलिए अब जान लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। पर उससे पहले मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे साथी ये भी इंतजार कर रहे होंगे कि कल का प्रश्न, जो उत्तर उन्होंने भेजा है उसका, वो सही है या नहीं सही है। तो हमारा कल का प्रश्न क्या था, पहले वो जान लेते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आधिकारिक आगमन किस राज्य से माना जाता है, जिसका सही उत्तर है केरल। और जिन भी साथियों ने इसका हमें सही उत्तर भेजा है उनके नाम है,
0: उनके नाम है प्रवीर चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, रवि मौर्य ग्राम सिमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी से, चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, अशोक कुमार श्रीवास्तव सारनाथ वाराणसी से।
1: तो क्या बात है भाई, खूब सारे साथियों ने हमें सही जवाब भेजा है और वो विनर भी बन गए हैं। इसी के साथ साथ अब चलिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस महीने में मनाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस महीने में मनाया जाता है। और
0: और आप
1: इसका
0: अपना सही जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी youth_AIR वाराणसी, या फिर हमें मेल भी करिए। हमारी ईमेल आईडी है youth_AIR_VNS@gmail.com पर। तो फटाफट से अपना फोन उठाइए और हमें अपना जवाब भेज दीजिए। तब तक के लिए सुनिए ये गीत।

0: तो देखते ही देखते हमारे कार्यक्रम में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो आपको बताना है। और आज के दिन से जुड़ी हुई हमारी इतिहास में बातें क्या खास है, चलिए अब वो जान लेते हैं। तो आज ही के दिन दोस्तों 10 जून 1848 को न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहला टेलीग्राफ लिंक शुरू किया गया था।
1: 10 जून 1946 में राजशाही शासन खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र बना था।
0: और इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी बता दें आपको कि आज ही के दिन 10 जून 1971 में अमेरिका ने चीन के 21 साल के व्यापार प्रतिबंध को खत्म कर दिया।
1: और दोस्तों 10 जून 2002 को पाकिस्तान ने विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का नाम बदलकर शाह गौरी कर दिया था।
0: क्या बात है दोस्तों, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई इतिहास में क्या उपलब्धि है वो। अब चलिए इसी के साथ साथ जान लेते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना क्या है।
1: दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट ALP पदों के लिए 11,127 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी की है। उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशंस 10th पास होनी चाहिए और साथ साथ संबंधित ट्रेंडों में ITI भी उत्तीर्ण होना चाहिए।
0: और इच्छुक उम्मीदवार जो भी हैं दोस्तों वो जा करके फटाफट से इसकी अंतिम तारीख तक यानी 14 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि rrb.apply.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो फटाफट से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जो समय बाकी रह गया है उसका उपयोग करते हुए इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और अब धीरे धीरे हमारे स्टूडियो की क्लॉक ने भी इशारा करना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे जाने का भी वक्त करीब आ गया है। पर जाते जाते एक जानकारी जो हम आपको जरूर देंगे और एक बात एक्चुअल में हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे वो ये कि आज के टाइम में महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी बात की जा रही है, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ विमेन बीइंग अ गर्ल कि बात सशक्तिकरण तो एक मुद्दा है ही और उस पर काम भी जोर शोर से चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं भी सरकार की हैं जो इस पर की जा रही हैं और इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज जो मुख्यतः आम तौर पर जो होनी चाहिए वो ये कि सबसे पहले तो एक महिला का सम्मान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी हम सड़क पर चलते हैं प्रगति,
1: जी नहीं,
0: चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे कहीं पर भी हो, ऐसे शब्दों का चयन जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि आमतौर पर सभी के साथ में, हम जिसके साथ में भी उठ बैठ रहे हैं उनके साथ में सम्मान से भरा हुआ हमेशा होना चाहिए। किसी को भी ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिससे कि उन्हें ठेस
1: ठेस
0: पहुंचे। और
1: पहुंचे।
0: कई दफा ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एक महिला होने के नाते ये चीज महसूस होती है कि ये शब्द बोलना
1: गलत
0: सही
1: होता
0: नहीं था।
1: है।
0: तो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण से पहले तो जो ज्यादा जरूरी है वो है एक महिला का सम्मान। तो ये चीज गौर करने वाली थी। फिलहाल में उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और कार्यक्रम सुनते रहेंगे और कुछ बातें जो हैं जो हम आपसे कहते हैं उसका ध्यान भी देंगे। तो चलिए आज के युवाणी के अंक में इतना ही। आज के ये दो रेडियो साथी यानी कि नेहा
1: और मैं प्रगति,
0: का नमस्कार।
1: नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युवावाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।

0: सिंह मस्त, पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय शंकर राय के सतही कई गो गणमान्य लोग स्वर्गीय गौरी शंकर राय के भावभीनी श्रद्धांजलि देत उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में चर्चा कैले। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको भोजपुरी में समाचार किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से सुचारू रूप से नहीं सुना सके, जिसका हमें खेद है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 10 बजे नाटक कर्फ्यू की रात का प्रसारण होगा। लेखक होंगे तांगुली कक्कड़ और प्रस्तुति किशोर कुमार की होगी। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में गन्ने की फसल में सामयिक कार्य विषय पर वीरेंद्र कुमार सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनिएगा अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया लोकगीत। शाम 7 अंग्रेजी कार्यक्रम में डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन की वार्ता का प्रसारण होगा। विषय होगा बनारस द सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। 8 सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर रेवती साकलकर के गायक गीत। 8:10 पर सरकार की 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 10वीं कड़ी का प्रसारण होगा। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर और 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें, कल यानी 11 जून 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले

0: मुख्य कार्यक्रमों की। कल शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में ज्वार की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मधुमेह कारण लक्षण और उपाय विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडेय। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी का शनै वादन। दिन में 12:45 पर कुमार सारंग चौधरी के संतूर वादन का प्रसारण होगा। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर और रात 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी चंद्रा रानी। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम अंगनैया में महिलाओं में गर्भधारण की समस्या और गर्भ संस्कार का आध्यात्मिक एवं चिकित्सीय दृष्टिकोण विषय पर डॉक्टर अनीता चौधरी की बातचीत के अलावा सुनिएगा गीत संगीत। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत के कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत के अंतर्गत तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार यादव से बातचीत के अलावा सुनिएगा मोहम्मद इस्लाम का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। रात 8:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 11वीं कड़ी का प्रसारण होगा। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 14 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आरोग्यम का विषय है सिर की चोट, कारण लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 11 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सिर की चोट, कारण लक्षण और उपचार विषय पर परामर्श के लिए हमें फोन कीजिए गुरुवार यानी 11 जून को 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, तो कीजिए हमें फोन और सुनते रहिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
0: सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाज में आइए सुनते हैं फिल्म बागबान का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। 6:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायि विश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः, कृषि कृषक कल्याणमन्त्री शिवराज सिंह चौहानेत्यादयः केन्द्रीयमन्त्रिणः स्वतन्त्रभारतस्य दीर्घतम निरन्तर निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रिय विकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायि विश्वासं च प्रतिबिम्बयति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण, पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन, ऊर्जा मन्त्रिणा मनोहर लालेन, रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन, विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा जितेन्द्र सिंहेन, संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन, विधि न्याय मन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायां मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः अपि प्रधानमन्त्रिणं मोदीवर्यं सभायाम् उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः। विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं वैश्विक दक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिंश्च प्रशंसितवन्तः। वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा PLI इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्य अन्तर्गतं 22 नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि। वस्त्रमन्त्रालयः अवदत् यत् योजनायाः तृतीयचक्रस्यान्तर्गतम् आहत्य 96 समवायविशेषाः चिताः सन्ति, येषु 22,800,000,12,000 प्रतिबद्ध निवेशः, 58,000,000,000 प्रत्याशित व्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते 20 एनहान्स्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49,400,000,000,000 अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्य अन्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पान् च निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,000,000,000

0: द्विसहस्रकोटिरूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रोमार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य CNG इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च LPG सम्पर्कान् PNG सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पत्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लङ्घनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गुलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम्, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य PV सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम।
1: सुमारो भैया,
0: हाँ गौरी, बोल काल चाल है।
1: किसानी का क्या हाल चाल बा?
0: किसानी के तो बहुत बढ़िया हाल चाल है। अभी देखा रोहिणी नखत में तो अपन हम बिया डाल दे रही है, ओके जियाओ थे। आ धीरे धीरे कौन चीरे धूप तो देखते बाटू, लू भी चलत है। ये में बिया के बचाई बहुत जरूरी है गौरी। लेकिन कुछ किसान भाई अभी भी बाकी हों जो बिया ना पड़ल है, तो जल्दी से जल्दी अपन बिया डाल दे धान का। कहे से कि कहल गल कि आगे खेती आगे आगे पाछे खेती
1: पाचे
0: भागे
1: पाचे।
0: जोगे है कि नहीं। और बतावा।
1: और तो हमने कभी अभी बिया पड़ गल हाँ,
0: अच्छा तो
1: उनमें
0: बहुत
1: दो तीन
0: बढ़िया।
1: पानी भी डला गल हाँ।
0: अच्छा तो बिया नया रहा कि पुराना धान रहा।
1: बिया तो मैं नया पैकेट का खरीद के
0: बहुत
1: आया।
0: बढ़िया भाई, देखा चतुर किसान तू लोग हो जाए। हमेशा विज्ञानी भी कहना है कि हमेशा बिया नया रहे नर्सरी है। हाँ बहुत बढ़िया।
1: लेकिन पैकेट का बिया अगर खरीदा थे बाजार से दुकान से, तो मैं हम सब किसान भैया लोग के एक चीज और ध्यान देक चाहिए।
0: बताता क्या दे
1: ये
0: हूँ।
1: ध्यान देक चाहिए कि अगर पैकेट का कोनो उत्पाद या फसल बीज खरीदा थे, अगर कीटनाशी या कोनो चीज़ खरीदा थे, जैसे अभी बिया का बात है,
0: हाँ
1: तो बिया खरीदा थे तो मैं जो अंकुरण प्रतिशत जो के जर्मिनेशन परसेंट कहल जाला, उल कितना लिखल है, कितना प्रतिशत है। अगर वो कम है तो बीज जो है वो खेत में कम होगी, तो वो हमेशा अधिक रह के चाहिए। और खरीदा समय ये भी ध्यान देव के चाहिए कि ओकर उत्पादन तिथि, समाप्ति तिथि, ये सब देख के लेके चाहिए।
0: सही कहलू गौरी। देखा हमन सब लोग उपभोक्ता ही जाए, आ हमेशा उपभोक्ता ठगा न जाए, यही बदे हमन के बचाव बदे उपभोक्ता संरक्षण नियम लगा।

0: बनाओल गया है, काहे से कि उपभोक्ता लोग जाना कोनो सामान खराब निकल गए तो त्रुटि हो गल हो गल तो लोग आनाकानी कर रहे फेरे में। यही बदले हमन कहले जा भाई देखा हो गृहस्थी में पैसा रुपया बड़ी मायने रखा ला, बड़ी गाड़ी कमाई है, चूँकि हमन की खेती किसानी में हमेशा कुछ न कुछ घटल रहला, कहीं पढ़ाई है लिखाई है बाल गोपालन का खेती है बारी है हित है नाथ है नौता हकारी है कि नहीं। तो ऐसने में कहीं ठगा न जाल जाए कि जौन कहलू कि भाई अब धान के बीज जेले उगल हुई या कौन सामान खरीदेंगे ना बाजार में तो ओकर रसीद जरूर मांग ले है। और जो बतौलू कि देख ला भाई ओकर पीछे जो लिखल रहा ला जैसे कि समाप्ति तिथि है एक्सपायरी डेट जे के
1: कहला
0: तो कि देख लो कि चाहिए अपन सुरक्षा अपने हाथ में है। और रसीद ले बहुत जरूरी है, कहे से कि रसीद ना रही तो कोनो शिकायत कहीं ना हो सकत,
1: कोनो सबूत ना रहे ना कि हमें दुकान से ले ले ओकरे बदे सबूत रह के चाहिए।
0: अगर दुकानदार आनाकानी करत हुआ सामान वापस करे में या कुछ करे में पैसा ना देत हुआ सामान नहीं बदलत हुआ तो एक बदे उचित मंच बनल है उपभोक्ता फोरम है कि नहीं, वहाँ शिकायत कर जा सकेला
1: बिल्कुल
0: है कि नहीं। और देखा जो शिकायत करे के एक मियाद होला भाई हमार किसान मन यही जा है कि नहीं, तो हमन के जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जानकार भैया लोग हों उनसे समझ करके बता दे कि देखा भाई हमन के साथ ऐसे ठगी हो गल है तो कितना दिन के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता फोरम में हमन शिकायत कर सकीले जाए।
1: ये सब विशेषज्ञ लोगों से जानकारी लेके
0: ले करके
1: कि कितना दिन में कर सकेला और कितना उचित दाम तक हो सकेला कहाँ से हो सकेला ये सब उनसे जानकारी लेके कर सकेला।
0: तब भाई देखा कुल मिला जुला के हमन के हर तरह से बचे किया है कि नहीं। हमेशा गृहस्थी में कुछ न कुछ जैसे कि धान के बिया के बात ना है हमेशा मैंने को कल पुर्जा भी ले के है उपकरण किसानी के उपकरण ले के है तो उस सब में उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू हुई।
1: बल्कि दैनिक जीवन में जितना भी चीज़ हम सब इस्तेमाल करते हैं कोई भी हो तो वो सब भी उपभोक्ता ही है, तो हर चीज़ को कर रसीद लेके ओके देख जांच पर रख के ले के चाहिए। तो अगर उत्पाद में कोनो भी समस्या है कोनो शिकायत है तो कोई भी ओकर उपभोक्ता में उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकेला
0: कर सके ना। और हमन के लाभ भी मिली तो ये बदे कल जरा भाई कि जागो गाहक जागो। हमन के हमेशा सतर्क रहे कि कहे से कि देखा कहल गल कि गृहस्थी बड़ी कठिन है गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन है गौरी मन दू पैसा हमन जोड़ी ले जाए फिजुल खर्ची ना हो आए तोने पर लोग देखा बैठल निगाह लगा के जय जवान जय किसान की बात होला किसान अन्नदाता कहल जाना हमन किसान मन नहीं है जाए हमन खेती किसानी की बात करे जाए तब वो ठगी हो ही जाला कभी कभी। तो ठगी के बचाव बदे कुल मिला जुला के हमन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उचित फोरम पर जा करके शिकायत कर सकेले जाए है कि नहीं। अतः इधर अपन बात होकर गौरी अब किसान भाई को संदेश सुनवा हो जाए
1: सुनवा
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ जी नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: हाँ संदेश तो होगल। अब देखा आज बहुत बढ़िया बातचीत है अपने पंचायती में। नगदी फसल गन्ना होला ना है हमन गन्ना के भी खेती करी ले जाए। तो गन्ना के बारे में जानकारी हो चाहिए कि इस समय के हमन गन्ना के कौन सा विशेष काम कर जाए कि गन्ना का हमन खेती बढ़िया हो है। तो यही विषय पर आज बातचीत है गन्ने की फसल में सामयिक कृषि कार्य का कर जाए हमन किसान भाई लोग वीरेंद्र कुमार सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव बतियावत हुआ सरपंच लोग भाई ध्यान से सुने।
6: वीरेंद्र कुमार सिंह आप पूर्व सहायक निदेशक रहल हुआ गन्ना प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में। आज हम ये जानल चाहब कि जोन मौसम चलत है समय एमन अपने गन्ना के फसल में कौन कौन सामयिक कार्य करे के हो
7: जी।
6: ये विषय पर हमारे किसान भैया लोगों ने जानकारी दें।
7: सबसे पहली बात तो ये

है कि कार्तिक भावक और बसंतकालीन भावक, ये दोनों गन्ने की जो शरदकालीन बसंतकालीन दोनों की बुआई हो चुकी है, और अब इस महीने में ये जो खाद हमने नाइट्रोजन का जो 1/3 भाग जो दिया था, शेष जो 2/3 भाग जो देना था उसको हम 3-4 बार में जून के आखिरी सप्ताह तक देते हैं। और गन्ने की बुआई चूंकि अच्छी उत्पादन

0: की बुआई चूंकि अच्छी उत्पादन लेने के लिए नाली विधि से की जाती है, ट्रेंच विधि से, जो नालियां 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई जाती हैं, 1 फुट गहरी रहती है, 1 फुट चौड़ी रहती है। और इसके लिए शुरू में ही किसान भाइयों को सतर्कता करनी चाहिए कि गर्मी की गहरी जुताई 10-12 इंच करेंगे तो फिर जा करके वो कूड़ जो ट्रेंच ओपनर है वो बना पाएगा,
1: जी
0: अन्यथा वो बनाने में दिक्कत होगी। और गहरी इतने पर इसलिए बोया जाता है क्योंकि गन्ना प्रायः गिरता है और सिंचाई में पानी इधर से उधर पूरी खेत में बिखरता, तो नाली में ही सिंचाई की व्यवस्था है, नाली में ही गुड़ाई की व्यवस्था है, नाली में ही खाद देने की व्यवस्था है, तो इससे खाद पानी का पूरा पूरा सदुपयोग हो, इसलिए नाली विधि को सबसे सर्वोत्तम माना गया है, और वो भी उसको ट्रेंच विधि कहते हैं।
1: अच्छा
0: तो अब उसमें हम गन्ना 1-1 मीटर में 5-5 सेंट दो आंख के टुकड़े जो है दोनों कोने पर बोते हैं। पहले हम जो खाद देना है उसको हम पूरा पूरा दे देते हैं, उसमें 1/3 भाग नाइट्रोजन मिट्टी के परीक्षण के अनुसार, और शेष जो है फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा देते हैं। 200 किलोग्राम तत्व के रूप में नाइट्रोजन चाहिए, 80 किलोग्राम तत्व के रूप में फास्फोरस और 60 किलोग्राम तत्व के रूप में पोटास चाहिए। मृदा परीक्षण के परिणाम के अनुसार कम से कम इतना तो चाहिए ही, और साथ साथ में फसल चक्र का ध्यान रखना चाहिए, और हर साल या हर तीसरे साल जब हम फसल को बदलें तो सनी और ढेंचा का प्रयोग जरूर करें ताकि मिट्टी में जीवांश तत्वों की कमी न होने पावे। अब जब जीवांश तत्व रहता है तो नमी बनी रहती है, अब जैसे इतनी बड़ी गर्मी है जिसमें जीवांश तत्व की बहुतायत है, तो उसमें पानी तत्काल देंगे तो तत्काल नहीं, उसको नमी काफी समय तक बनी रहती है,
1: अच्छा
0: और उससे किसान पे जो पानी का खर्च है उसमें कमी होती है। तो इसलिए इस महीने में जो हमारे पास खाद की मात्रा का, यूरिया का जो आखिरी डोज है वो हम दे देंगे, और बुआई के समय ही कुछ मिट्टी 2-3 इंच गन्ने के टुकड़े पे गिरा दी जाती है, और हर 15 दिन 20 दिन या 2 हफ्ते 3 हफ्ते पर बस हल्की सिंचाई की जाती है कि पानी नाली में वहां तक पहुंच जाए और पहुंच करके उसमें भरने न दिया जाए। अगर
1: अच्छा
0: जल निकास की सुविधा नहीं रहेगी तो पौधे का विकास रुक जाएगा। तो इसलिए क्या, और बीच बीच में जो जगह हमारी खाली है उसमें लोगों ने मिलवा फसल समय के अनुसार लिया, जैसे अभी इस वक्त है मूंग है मसूर है, ये फसलें ली जा सकती हैं। अगर कुछ भी नहीं ली गई है तो ऐसी दशा में वहां पर हम सनई या ढेंचा को भी उगा करके और उसको हरी खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए उस स्थान में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं,
1: ओके पलट दें जैसे कोई जीवांश की मात्रा जमा
0: मात्रा
1: मिट्टी
0: बढ़
1: में रही
0: जाए।
1: है। जी
0: अंततोगत्वा हमारे गन्ने को ही पूरी खुराक मिलनी चाहिए
1: जी जी
0: ताकि हमारा गन्ने का विकास बहुत अच्छा हो। अब गन्ने में कुछ कीट कुछ बीमारियां लगती हैं, और दो आंख का टुकड़ा हम इसलिए रखते हैं कि दो आंख का टुकड़े में जमाव लगभग 70 से 80% तक हो जाता है। जैसे जैसे आंख की मात्रा की लंबाई को हम 2 आंख 3 आंख 4 आंख कर देंगे तो उसमें जो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं सक्रिय होते हैं, तो पहले एक आंख जमती है तब दूसरा जमने पाता है, फिर
1: अच्छा
0: दूसरा जमता है तब तीसरा जमने पाता है। तो अगर हम कई आंख कर देंगे तो हमारा जमाव जो है धीरे
1: कम हो
0: धीरे गिरता
1: जाएगा।
0: चला जाएगा, इसलिए दो आंख सर्वोत्तम माना। एक आंख अगर कर दीजिए तो 100% जमाव हो जाएगा, लेकिन चूंकि किसान को ज्यादा एरिया में गन्ना बोना होता है इसलिए संभव नहीं, इसलिए दो आंख सबसे सर्वोत्तम पाया गया। अब उसमें जून के आखिरी सप्ताह में हम ऊपर से जो मिट्टी थोड़ी थोड़ी मिट्टी कूड़ में हम गिराते जाते हैं, लेकिन लास्ट में हम पूरी मिट्टी ट्रेंच ओपनर से ही गिरा देते हैं, और वो बिल्कुल, और बीच बीच में जो समय खाली रहे जब तक नाली, तब तो उसमें खुरपी से या कस्सी से उसमें घास इत्यादि निकाल देते हैं और सिंचाई होती रहती है। फिर बाद में जब जून के आखिरी सप्ताह में मिट्टी चढ़ाई हो जाती है तो जून और जुलाई के महीने में फिर हम उसको पत्ता बंधाई का काम करते हैं, क्योंकि गन्ना काफी बढ़ जाता है, तो उसमें एकल थान में बंधाई विधि है, और एक नाली का 2 थान, एक नाली का 1 थान त्रिकोणात्मक बंधाई भी है। बस बंधाई में ध्यान रखना है कि बहुत बस हल्का सपोर्ट देना चाहिए कि ताकि पौधों को बढ़ने में उससे कोई अवरोध न उत्पन्न हो, इतना कस के न बांधा जाना चाहिए। और अगर पानी नहीं बरसता है तो 1 महीने पर एक बार सिंचाई करनी आवश्यक होती है। अगर मान लीजिए कि हमने खाद किसी कारण से पूरी नहीं दे पाए और यूरिया से नाइट्रोजन नहीं दे पाए तो 10% यूरिया का घोल हम अगर उस पर छिड़काव कर दें तो बहुत वो पूरा नाइट्रोजन जो है गन्ने के पौधे को मिल जाएगा, और इस तरीके से हमारा गन्ना जो है काफी बढ़ता चला जाएगा। अब जहां तक कुछ की

0: और बीमारियों की बात है तो ऐसा अनुसंधान में यह पाया गया है कि अगर हम नीम की उत्पाद को हम बुआई के समय ही नीमक्स खाद जो उनकी फली है उनकी पत्ती है इत्यादि को कंपोस्ट खाद में डाल दें तो वो खाद अपने आप फफूंद नाशक और कीटनाशक का काम करती है और उसे उसे हमारा दीमक इत्यादि नहीं लगता। अन्यथा हम नीम की खली को अगर कूड़ों में डाल दें तो भी दीमक का बचाव हो जाता है, या हम 10 किलोग्राम नीम की खली लेकर के रात में पानी भिगो दें और सवेरे उसको 100 लीटर पानी में घोल करके उसको हम छिड़क दें तो विभिन्न प्रकार के कीटों को उनके लार्वा प्यूपा अंडे इत्यादि वो निष्क्रिय हो जाते हैं या जो कीट हैं वो उसकी गंध से भाग जाते हैं।
1: तो एक चीज जानना चाहे कि जो आप नीम के छिड़काव का बात करते हो तो नीम का स्वभाव होला कि कड़वा होला
0: जी जी,
1: तो गन्ना का जो मिठास है पर कोनो प्रभाव न पड़े?
0: नहीं, गन्ने का मिठास को जो करने में संतुलित खादों का मुख्य योगदान होता है
1: जी।
0: भाई आप किसी को मतलब कीट और बीमारी को दूर करना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम वो जहरीली कीटनाशक दवाई जब देंगे तो हमारी जितने भी मित्र कीट हैं जो पौधों के विकास के लिए लाभदायक काम करते हैं वो सब मर जाएंगे। जैविक कीटनाशकों पर ज्यादा भरोसा करने की बात है। पौधों में तो लगी जा रही बीमारियां जो है काना रोग उकठा रोग दीमक और तमाम प्रकार के कीट लग जाते हैं तो इन सब का निदान इसीलिए संभव है कि अगर हमारे अंदर मिट्टी के अंदर पोषक तत्व रहेंगे और हमारे जैविक कीट बरकरार रहेंगे और साथ ही साथ खेत के चारों तरफ आपके सागौन के या ये पौधे लगा दिए जाएं तो नीचे से छटाई होती जाती है पौधा बढ़ता जाता है तो उस पर जो चिड़िया इत्यादि बैठती हैं वो बहुत से हानिकारक कीटों को खा जाती हैं तो इसलिए और वाटर स्टेटा भी जो नीचे भागता जा रहा है पेड़ों की वजह से ऊपर मेंटेन होगा अपनी जगह पर तो इन सब बातों का
1: पेड़ लगाओ की जो ना बात करते हो तो का उसे धूप जो रुकी उसे अपन फसल प्रभावित
0: नहीं क्योंकि शीशम और सागौन की छटाई होती जाती है तो ऊपर बढ़ता जाता है और गन्ना तो 10 फीट 12 फीट वो तो बढ़ जाता है 30 से 40 फुट और ऊपर तक चला जाता है
1: तो नीचे से घाम पूरा जो
0: हाँ नीचे से पूरा धूप और उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
1: जी।
0: बस ये रहेगा कि आपको बहुत सी जो हमारे पक्षियां इत्यादि हैं जिनका आहार ही कीट है ये सब है तो उनके अंडे बच्चों को वो प्रायः उस पर कीड़ों को खा लेते हैं
1: उनका पेट भी भर जाए हमारी फसल
0: हाँ हो जाएगा।
1: एक चीज और जानना चाहे आपसे कि बुआई के समय जब ये फसल के उपचारित कर लिया जाला तो बहुत सारे रोग कीट जो नो ऐसा कि उसे बचाव हो जाला।
0: हाँ जी जी,
1: तो कैसे उपचारित?
0: अब देखिए दो आंख के टुकड़े, एक तो ताजा गन्ना होना चाहिए, पौधशाला से ले जाए कीट रहित हो और उसको बैवेस्टीन या कार्बेंडाजिम। बैवेस्टीन लेते हैं तो 112 ग्राम 112 लीटर में, कार्बेंडाजिम लेते हैं तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के रेशियो में उतना पानी बना ले और उस हिसाब से उसको 10 मिनट तक उसमें डाल दें दोनों में से कोई एक।
1: अच्छा।
0: तो वो जो है तमाम प्रकार के जो फफूंद से लगने वाले रोग हैं इत्यादि है। अच्छा होगा और भी सतर्कता के लिए अगर हम 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 घंटे तक हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर हम उसका शोधन करा लें या गर्म जल में 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे तक, हर चीनी मिलों में प्लांट लगे हुए हैं।
1: अच्छा।
0: तो किसान भाई इससे आपका पूर्णतया फफूंद रोगों से इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर लग भी जाए अगर खेत में खड़े हों तो उस स्थान को पूरा का पूरा फफूंद जिनमें लग गए हैं और बीमारियां लग गई हैं उनको निकाल करके नष्ट कर देना ही श्रेयस्कर है क्योंकि उससे महामारी फैल जाएगी तो पूरा गन्ना का प्लाट ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उनको निकाल दिया जाए और शुरू में ये सावधानियां बरत ली जाए और बीज केवल पौधशाला से लिया जाए अन्यथा से नहीं लिया जाए। हाँ, हमारी बहुत सी शीघ्र पकने वाली जैसे कोसा 88,230 है, कोसा 84,636 है, ये शीघ्र पकने वाली चीनी का पड़ता ज्यादा होता है तो पौधशालाओं में उपलब्ध है, अनुसंधान केंद्रों के फार्मों पर उपलब्ध है तो वहां से किसान उसको पेमेंट लेकर के ले सकते हैं।
1: जब परिपक्वता का अवस्था हो
0: हाँ,
1: तो किसान भाई कैसे जाने कि अब हमारे जो फसल?
0: अब देखिए ऐसा है कि जो गन्ना कार्तिक भाव में बोया जाएगा उस गन्ने की जो मैच्योरिटी है वो दिसंबर, अगर शीघ्र पकने वाली जात का है तो निश्चित रूप में नवंबर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते उसकी परिपक्वता आ जाती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन जो मध्य और देर में पकने वाली जातियां हैं वो मार्च के आखिरी सप्ताह में एकदम उसका शुगर परसेंटेज वही हो जाता है जो कार्तिक भाव के गन्ने का हो जाता है।
1: अच्छा।
0: और जो पेड़ी का हो जाता है, इसलिए समय से कटाई होनी चाहिए। इसीलिए हम पहले कहते हैं पेड़ी काटिए, क्योंकि पेड़ी गन्ना

0: जो होता है वो उसके उसका रस बहुत गाढ़ा होता है और परिपक्व रहता है, इसीलिए पहले पेड़ी कटाई होती है, तब बाव की कटाई होती है, और इसी तरीके से मैच्योरिटी वाइज उसके गन्ने की सप्लाई भी की जाती है, तो उसी के अनुसार शीघ्र पकने वाले गन्ने का दाम का की कीमत भी ज्यादा रहती है, 10-15 रुपए प्रति क्विंटल अधिक रहता है। तो इस बात को अगर हम बहुत सावधानी के साथ इसको नहीं देखेंगे और अगर हम इसका नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में हमारा उत्पादन गिरेगा, देर में गन्ना बोएंगे तब भी गिरेगा, सिंचाई समय से नहीं करेंगे तब भी गिरेगा, और उर्वरा शक्ति पर ध्यान नहीं देंगे तब भी गिरेगा।
1: सावधानी का बात कहना तो एक बात और हम आपसे जानना चाहें कि जैसे कि गन्ना नकदी फसल कहल जाए
0: जी जी,
1: और बीच बीच में किसान भैया लोग काट काट के सहारन में देखा है रस निकाल के भी बेचत हो, तो का एमन कटाई करे चाहिए तरह से बीच बीच में या करे तो क्यों सावधानी रखे जैसे कि फसल प्रभावित ना हो।
0: हर काटने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गन्ना बोए एक बार लाभ कमावे तीन बार, अगर वो समय से कटाई नहीं करेगा तो निश्चित रूप में उसकी पेड़ी नहीं हो पाएगी। आप अपने तत्काल क्षणिक लाभ के लिए आपने गन्ने की कटाई कर दिया नवंबर में बुआरी की, तो नतीजा ये हो जाएगा कि उसकी पेड़ी नहीं हो पाएगी, इसलिए 15 फरवरी के बाद चाहे शीघ्र पकने वाली हो चाहे वो क्या नाम है मध्य देर में पकने वाली हो, अगर 15 फरवरी के बाद कटाई करेंगे या मार्च में करेंगे पूरी परिपक्वता रहेगी और किसान को पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अगर ऐसे ही काट लेंगे नवंबर में काट दिया, दिसंबर में काट दिया, जनवरी में काट दिया, तो भले आपको कुछ समय के लिए मिल जाए लेकिन आपकी पेड़ी चौपट हो जाएगी
1: जी, अगली फसल प्रभावित।
0: हाँ बिल्कुल निश्चित रूप में जो तीन पेड़ी लेने का हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा जो है लागत बढ़ जाएगी और उत्पादन हानि होने लगेगी
1: जी। माने थोड़ा सा दूर दृष्टि सोचें, थोड़ा सा जो धैर्य रखें,
0: बिल्कुल बिल्कुल धैर्य के साथ काम करें और ये ध्यान रखें, ये न देखें कि भाई उधर गन्ने के छिलने वाले नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे अभी हम काट डालें, इस लालच में अगर आप करेंगे तो आप बहुत कुछ खो जाएंगे
1: जी। जी तो भैया वीरेंद्र कुमार सिंह जी आप हमारे पंचायती में ही ना और इतनी अच्छी जानकारी देना कि गन्ना में इस समय सामयिक कार्य कौन कौन कर रखे हो, का सावधानी रखे हो गन्ना के फसल में, ये जानकारी देने बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गौरी
3: हाँ सुमारू भैया
2: बातचीत बहुत ज्ञानवर्धक रहल कि गन्ने के फसल में सामयिक कार्य हमन का करल जाए, किसान भाई लोग का करें। वीरेंद्र कुमार सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया बतियावत रहन, अब बहुत बढ़िया बात रहल भाई, देखा कहल के देखा भैया बतौन न कि गन्ना बोए एक बार लाभ लेवे
3: तीन बार
2: यही से के नगदी फसल कहल जाला, हमन के समय से पैसा मिल जाला, लेकिन बहुत बढ़िया बताऊना कि उर्वरक ध्यान दे बहुत जरूरी है तब अच्छा हो, परिपक्वता पर कटाई के बाद बताऊना है और कीटनाशक के बाद बताऊना कि कीटनाशक खासकर नीम अगर जैविक विधि से बताऊना जो तो ऐसे हमारे माटी भी सही रही और पहुँच रहे
3: उत्पादन भी अगर सही में से कटाई हुई तो उत्पादन भी अच्छा है।
2: लालच में न फंसे हम किसान भाई लोग कि जल्दी जल्दी बीज काट दो जाओ उसमें कौन जरे छिलाई करे वाला कोई ना है, उचित परिपक्वता का ध्यान दें, जल्दी पकने वाली भी कौन चीज गन्ना हो देर से भी तो ओकर हिसाब रख करके वही हिसाब से अगर काम करे तो अच्छा लाभ मिली। ये तो बात हो गल आज गौनई की कर हो तक पंचायती में
3: आज अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का किसानी गीत
2: सुनवा दा।

0: होवे दुनिया भर का भरवा खेती हरवा, कोई ना भुलाई तोर करनी खेती हरवा। सही बात है जे किसान के करनी भुला जाई हो वो कहाँ भरपाई करी। हाँ ये दोपहरिया में सब लोग आनंद ले दिन किसान अपने खेती में लगल है, ध्यान दी है बात के। तब बड़ी परिश्रम से पैदा होला अनाज, हाँ यही से किसानन के अन्नदाता कहल जाला, सबकर पेट भरा ना। हाँ अपने अभाव में भले रहले लेकिन सोचन कि भाई सबकर पेट भरल है तो गौ नहीं तो होगा। अभी बतावा कल बिहने खेती के बातें करके में क्या हुई।
1: कल सवेरे 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में विषय रही ज्वार की खेती, उस पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
0: अच्छा दिनेश कुमार सिंह में जानकारी दें, ज्वार के किसान भाई लोग जरूर सुनी है।
1: हाँ
0: कैसे कल गल कि बाजरा ज्वार
1: ना मोटा अनाज है
0: आज ओकर बहुत अधिक मांग
1: सेवन बहुत ज्यादा करे,
0: शरीर स्वस्थ रही
1: स्वस्थ रहे।
0: और संझा के कल पंचायती में क्या हुई।
1: संझा के 6:30 पर अपने कृषि जगत कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम है हेलो कृषि जगत, जेकर विषय है तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव, इपे डॉक्टर अरुण कुमार यादव से सजीव कार्यक्रम हो।
0: अच्छा उसे फोन करके पूछ सके ना भाई लोग तो जरूर फोन करी। हाँ हाँ डॉक्टर अरुण कुमार यादव भैया जवाब दी हाँ कि तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव कहाँ पड़ेला। सही बात है भाई, नशा नाश का घर है कि नहीं। कल गल कि नशा का जो शिकार भयल वह लोग अपने घरे तीन का जीवर तक भी बेच देवन,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: नशा
1: कहा।
0: से दूर रह चाहिए। और दूसर बात यही के देखल देखल मैंने अगर घर में बड़ बुजुर्ग नशा करते हो तो बाल गोपाल का भी प्रभाव पड़ेला है कि नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो यही बदे कहा गल कि नशा से दूरी बना कर रहे, अगर नशा कर रहूँ कि हाँ तो तरक्की का नशा हो,

0: बढ़िया खेती किसानी के नशा हो, बाल गोपाल के पढ़ावे के नशा हो, है कि नहीं, कोई सामाजिक बढ़िया काम करे के नशा हो, ई कुल में होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कथन सुमारू भैया।
0: अच्छा ये तो बात हो गई। ये देखा दोपहरिया में कितना तेज धूप लू लगत चला था।
1: हाँ धूप तो आजकल बहुत तेज है, और इतना कोई बाहरे अगर धूप में जाता तो लू लग जाता या चक्कर खा के गिर जाता। तो ये गर्मियों में तो दोपहर में बिल्कुल भी ना निकला जाए, जौन भी जरूरी काम है सुबह शाम में अपन कर।
0: बहुत बढ़िया गौरी बहन, बहुत बढ़िया बतौलो भाई कि अपन बिजनेस काम निपटा ला घरे का, संझा के जो बाकी काम रहेगा शाम के, लेकिन दोपहरिया में एकदम मत निकल जा, और अपने बाल गोपाल का भी अंदर करें। कहें से कि देखा लू लग जाई तो दिक्कत हो जाई, घरे के एक प्राणी भी बीमार हो जाना तो पूरा परिवार
1: परेशान हो
0: परेशान
1: जाएगा।
0: हो जाला। यही से कहा गल कि भाई देखा शुद्ध पानी पिए, स्वच्छ पानी पिए, पेट भर पानी पिए, बाहर का चीज न खाएं, खुला चीज न खाएं, कटल चीज न खाएं, है कि नहीं।
1: और खास करे गर्मी में तो ज्यादा तला भुना मसाला वाला चीज, बाहर का चीज न खाए तो ज्यादा।
0: हाँ सादा खाएं, आम का पन्ना बना के पिए लोग, चटनी पुदीना का, ऐसा चीज जो शरीर में तरावट रखा है,
1: और ये समय गर्मी में तो ये सब चीज़ ज़्यादा फायदा भी करा था।
0: कर लो ना। अब सत्तू को लस्सी के बना के पिए, और घड़ी सारा अगर चलेगा तो पंच लोग से आगे मगल जाए।
1: पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: 1, 2, 3, check.
1: दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार, यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 14 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आरोग्यम का विषय है सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 11 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052 यानी 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर परामर्श के लिए हमें फोन कीजिए गुरुवार यानी 11 जून को 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, तो कीजिए हमें फोन और सुनते रहिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
1: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना जुगैल जनपद सोनभद्र द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार प्रियंका पुत्री फूलमती निवासी टापू खास थाना जुगैल जनपद सोनभद्र ये 5 मार्च सन 2026 से लापता हैं। प्रियंका के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु लगभग 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, रंग साफ है। लंबाई 5 फीट 1 इंच है, शरीर एक गहरा बदन है, रंग साफ है, चेहरा सामान्य है। ये गुलाबी रंग का सूट और सलवार पहनी हुई है। यदि प्रियंका के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर थाना जुगैल जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है। ये सूचना थाना जुगैल जनपद सोनभद्र से ही प्राप्त हुई है। कविता पत्नी विजय निवासिनी खरहरा खास थाना जुगैल सोनभद्र की ये 22 फरवरी सन 2026 से लापता हैं। कविता के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग साफ है, सामान्य शरीर है। ये हिंदी भाषा बोल लेती हैं। ये नीले रंग की साड़ी और पैर में चप्पल पहनी हुई हैं। यदि आपको कविता के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर थाना जुगैल जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
3: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर

0: 1970 कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
1: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में

0: उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है।
2: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।
3: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 14 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आरोग्यम का विषय है सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 11 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052 यानी 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर परामर्श के लिए हमें फोन कीजिए गुरुवार यानी 11 जून को 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, तो कीजिए हमें फोन और सुनते रहिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
2: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जूली का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

जॉनी मेरा नाम। जी हाँ, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है इसी फिल्म से। आवाज़ किशोर कुमार और उषा खन्ना की है, गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 14 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आरोग्यम का विषय है सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 11 जून को 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052, यानी 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर परामर्श के लिए हमें फोन कीजिए गुरुवार यानी 11 जून को 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, तो कीजिए हमें फोन और सुनते रहिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हंसते जख्म से। आवाज मोहम्मद रफी और एस बलबीर की है, शब्द कैफी आजमी के और संगीत मदन मोहन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दूसरा आदमी से। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 जैरमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं डॉक्टर रेवती साकलकर के गायक गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं निराला की रचना।

डॉक्टर रेवती साकलकर के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता,

0: नागरिकों को वन रेगमन पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं न ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण

0: प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों

0: की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project. Also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Viksit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: Aaj desh ka har nagrik Viksit Bharat ke sapne se bhara hua hai. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर

0: देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई, जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 4398 दिन तक फराइज अंजाम दिए थे। काबिना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और यह फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी, जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा, जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिसकिन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बरसों से भारत की इक्तसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वजीर आजम मोदी की क्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिसानाई के, पपुआ न्यूगिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं शुभा मुद्गल का गाया ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, एल्बम सोचता हूँ से, आवाज बाबुल सुप्रियो की है, गीत फैजल अनवर का और संगीत समी मरूफ का।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की गाई गजल। शायर हैं बशीर बद्र।

مشت خاک سے مانا کہ مشت خاک سے

0: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 14 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आरोग्यम का विषय है सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 11 जून को 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर परामर्श के लिए हमें फोन कीजिए गुरुवार यानी 11 जून को 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, तो कीजिए हमें फोन और सुनते रहिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
0: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक कर्फ्यू की रात। प्रतिभागी हैं भोला बाबा, नीलकमल चटर्जी, MN गुर्जर, अविनाश नारायण, मीरा गुप्ता और पद्मिनी गुप्ता। लेखक हैं दांगुली कक्कड़ और प्रस्तुति किशोर कुमार की।

नगर में कर्फ्यू लागू हो गया है, आप अपने अपने घरों में जाएंगे। नगर में कर्फ्यू लागू हो गया है, आप अपने अपने घरों में चले जाइए।

हे भगवान, मैं इस अपरिचित नगर में आकर कहाँ फंस गया? यहाँ कोई परिचित भी नहीं, कहाँ जाऊँ? ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो बंद है, इसका गेट ये भी बंद है। अब कोई चारा नहीं, इस गली में ही शरण लेनी होगी। पर अंदर जाऊं कैसे? अगर गेट की दीवार फांद कर गया और लोगों ने चोर समझकर पकड़ लिया तो क्या? आज होगा देखा जाएगा।

0: इस पे वक्त कौन हो सकता है? कौन हो भाई, क्या चाहते हो?
1: जी, मैं मुसीबत में हूँ बाबा। बाहर कर्फ्यू लग गया है, कहीं ठिकाना ना पाकर मैं इधर चला आया।
0: कोई अजनबी मालूम पड़ते हो?
1: हाँ बाबा, केवल रात भर के लिए आसरा चाहता हूँ, कर्फ्यू खुलते ही चला जाऊंगा।
0: पर तुम अंदर आए कैसे? गली के बाहर का फाटक तो बंद था।
1: हाँ, बाहर गेट बंद था, पुलिस के मार के डर से मुझे कुछ नहीं सूझा बाबा, गेट की दीवार फांद कर कूद गया। इस मकान के आगे कोई रास्ता न देख अंधेरे में लौटने की सोच ही रहा था कि मेरी नजर ऊपर बालकनी में हाथ में लालटेन लिए हुए महिला पर पड़ी। सोचा इस मकान में शायद पनाह मिल जाए।
0: अच्छा, अंदर आ जाओ।

0: तुमने ऊपर खड़े किसी महिला को देखा?
1: हाँ बाबा।
0: अरे भाई, 20 साल से तो मैं इस मकान की रखवाली कर रहा हूँ, पर मैंने आज तक किसी की परछाई भी इस मकान में नहीं देखी। हाँ, कहते हैं कि इस मकान में किसी आत्मा का निवास अवश्य है, इसीलिए मैं रात में यहाँ बहुत कम रहता हूँ।
1: ये मकान कितना भव्य और सुरक्षित है, ऐसा जान पड़ता है मैंने ये जगह पहले कभी देखी है। इसमें इसमें कौन रहता है बाबा?
0: फिलहाल तो 20 बरस से मैं ही रहता हूँ बेटा। आओ यहाँ बैठ जाओ, रात तुम यहाँ सो सकते हो। यहाँ तुम्हें अकेले डर भी नहीं लगेगा।
1: डर? कोई बात नहीं बाबा, यही थोड़ी सी जगह काफी है।
0: भूख लगी होगी क्यों? अरे भाई, मेरे पास खाना है, हम दोनों के लिए पर्याप्त है।
1: आप कितने अच्छे हैं, मुझे पनाह देने के साथ साथ भोजन भी दे रहे हैं।

0: अच्छा बाबा, एक बात बताइएगा।
1: बताने लायक बात होगी तो जरूर बताऊंगा।
0: इस मकान का मालिक कौन है बाबा? आप कह रहे थे 20 बरस से इसमें कोई नहीं रहता?
1: ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बहुत थोड़े में बताऊंगा। ये मकान अब बिक गया है, एक बड़े आदमी पंडित उमा शंकर ने इसे मैं साजो सामान के खरीदा है और इसे अपनी पुत्री को दहेज में दिया है। मेरी नौकरी बरकरार रखते मुझे ही इसकी देखभाल के लिए यहाँ रखा है।
0: और बाबा, इसके पहले के मालिक?
1: पहले मालिक का नाम महेश पांडेय था, वे अब नहीं हैं। उनके नातेदार राम लखन पांडेय ने ये मकान बेच दिया है। महेश पांडेय ने अपने बाल्यकाल में अपने ही स्कूल की एक लड़की से प्रेम किया। दोनों के माता पिता इस प्रेम के विरुद्ध थे, पर ये दोनों प्रेम में इतने आगे बढ़ गए कि लड़की गर्भवती हो गई। उसने छुपकर एक बालक को जन्म दिया और उसे एक गांव के वीराने में छोड़कर चली आई। भाग्य की विड़म्बना देखो, हालात ने लड़की के पिता को मजबूर कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह उसके प्रेमी महेश से कर दिया।
0: पर पापा, उस बच्चे का क्या हुआ?
1: वो बच्चा एक पंडित जो डाकिया था उसको मिला। वो पंडित निसंतान था, उसने उस पुत्र को पाला, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उस पुत्र का नाम उसने शंकर रखा था।
0: शंकर? बाबा, शंकर तो मेरा भी नाम है।
1: तो क्या हुआ बेटा, एक नाम के हजारों आदमी होते हैं। वे दोनों प्रेमी जो पति पत्नी बन गए थे, उन्होंने अपने विवाह पूर्व हुए पुत्र को बहुत खोजा पर उसका पता न चला। आगे चलकर उनके यहाँ एक पुत्री पैदा हुई, पर उन दोनों के मन में उस पुत्र की कसक बनी रही। भाग्य की बात देखो बेटा कि बड़े होकर दोनों ही पुत्र पुत्री इसी नगर उज्जैन में एक ही विद्यालय में पढ़े और प्रेम के बंधन में बंध गए।
0: तो क्या पापा, उनके भाई बहन होने का किसी को पता नहीं चला?
1: सुनते जाओ बेटा। लो लो, ये पानी पी लो। हाँ, पता चला। पंडित का एक भोला नाम का मित्र था जो पंडित के साथ ही रहता था, वो भी डाकिया था। वो शंकर की कहानी जानता था। डाक बांटते बांटते उसका परिचय पुत्री के माता पिता से हो गया था। वो जान गया था कि शंकर और मधु दोनों भाई बहन हैं, पर वो चुप रहा। उसने सारी बात पंडित से छुपाई, इसलिए कि पंडित का एकमात्र सहारा शंकर है और बिना शंकर के पंडित मर जाएगा। अरे, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा, गरीब का खाने से शर्माते हो ना?
0: नहीं, ये बात नहीं बाबा, मुझे जितनी भूख थी भरपेट खाया, बल्कि हमेशा से ज्यादा खाया है मैंने। खाना बहुत स्वादिष्ट था बाबा। बाबा, आगे बताइए। ऐसा जान पड़ता है जैसे जैसे ये घटना

0: मेरी मेरी जानी पहचानी सी है बाबा।
1: पंडित का मित्र भोला किसी लंबी छुट्टी वाले की एवजी करने बाहर गया था। इसी दौरान मधु के माता पिता और पंडित ने मिलकर संबंध पक्का कर दिया, शादी का दिन तय कर दिया। हालांकि पंडित ने भोला को बुला भेजा, पर उसके आने में देर हो गई। विवाह हो चुका था, भावर पड़ चुकी थी। भोला पहुंचा, भेद खुला, सगे भाई बहन का ब्याह। ये सुन सभी दंग रह गए। पंडित बेचारा बैठा का बैठा रह गया, उसका उसका हार्ट फेल हो गया। शंकर अपने बाबा को देखने दौड़ कर आया। बाबा जा चुका था। मधु शर्म से कड़ी जा रही थी। उसने अपने आंचल को फाड़ा, एक कागज पर चार लाइन लिखी।
2: आंचल के इन चार धागों को राखी समझना, मैं इस महापाप का प्रायश्चित करने जा रही हूँ। अगले जन्म में फिर मिलूंगी, मेरी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना।
3: बाबा
0: क्या हो बेटा, क्या हो बेटा?
3: बाबा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: समझना क्या है बेटा, कहानी खत्म हो गई। मधु ने ऊंचाई से कूदकर पानी में समा ली और शंकर पागल हो भटकता रहा। और एक दिन वो भी चूल्हा छोड़ गया।
3: बाबा वर्षों से एक दृश्य मेरे दिमाग में फिल्म के बाद ही घूमता रहा है। अब इसे सपना कहूं या कुछ और, रात सोते में मुझे एक बंद गली में एक आखिरी मकान दिखाई देता है बाबा। उसमें मैं इधर उधर घूमता हूँ, भटकता हूँ इधर उधर। एक लड़की का चेहरा आता है और अदृश्य हो जाता है। पायल के घुंघरुओं के चलने की आवाज आती है। मैं उसे खोजता इधर उधर भटकता हूँ। वो लड़की मेरे सामने आ जाती है, कहती है,
2: मैंने प्रायश्चित कर लिया है, मेरी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना।
3: बाबा,
1: बाबू तुमने कोई सपना ही देखा है? अरे इस उम्र में अक्सर ऐसे ही सपने आते हैं।
3: पर बाबा एक ही सपना रोज रोज तो नहीं आता।
1: इन बूढ़ी आंखों ने जमाना देखा है। मेरी मानो तो बेटा, घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। आज की बाकी रात तुम्हारे सामने है, सोचो सुबह का भूला शाम को घर लौट आवे तो वो भूला नहीं कहलाता। अरे दो बज गए, बातों में समय का पता ही नहीं चला।
3: लेकिन बाबा,
1: लेकिन अब कहने को कुछ नहीं है। अब तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर के कमरे में सो रहा हूँ। कोई काम हो तो पुकार लेना, ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि दे।

0: Connais-tu? तुम तो भाई हो जो ऊपर बालकनी में लालटेन लिए खड़ी थी।
1: मैं वही हूँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुमने मुझे नहीं पहचाना।
0: तुम्हारा चेहरा तो मैंने देखा ही नहीं, पहचानूंगा कैसे? लालटेन तुम्हारे हाथ में है, पर चेहरे पर तो अंधेरा है।
1: जन्म जन्म से मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थी, तुम आ गए, मेरी साधना पूरी हुई।
0: साधना? पर तुम हो कौन? क्या चाहती हो? क्या बाबा से काम है? बाबा को बुलाऊं?
1: इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा भी नहीं, मुझे कोई नहीं देख सकता, केवल तुम देख सकते हो।
0: पर तुम दिखाई कहाँ दे रही हो? चेहरे पर तो अंधेरा है।
1: देखना चाहती हो तो देखो।
0: वही रूप, तुम वही हो जो मेरे सपने में आती रही हो, जिसके लिए लोगों ने मुझे पागल दीवाना समझा, और शादी की पहली रात अपनी पत्नी का मुंह देखे बिना मुझे भागना पड़ा।
1: हाँ, मैं वही हूँ, मधु, भूल गए? याद करो, पिछले जन्म में हम एक ना हो सके, हमारे रिश्ते ही अजीब थे। ये वही घर है जहाँ हम दोनों एक ही बंधन में बंधे और बिछड़ गए। मैंने कहा था ना, मैं प्रायश्चित करने जा रही हूँ अगले जन्म में, फिर मिलूंगी। मैं आ गई हूँ।
0: तुम सपने में और यहाँ मेरे सामने?
1: मुझे छूना नहीं, वरना तुम मुझे नहीं पा सकोगे। तुम बुजदिल कब से हो गए? सब कुछ छोड़कर भाग लिए। मैंने कहा था मेरी प्रतीक्षा करना,
0: पर मैं क्या करता? सभी ने मिलकर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी।
1: और तुम उस बेचारी का मुंह देखे बिना भाग लिए।
0: पर तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो?
1: मैं सब कुछ जानती हूँ। 20 साल से मैं तुम्हारा पीछा करते करते भटक रही हूँ। तुमने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया। तुमने मुझ पर ये दूसरा अन्याय किया है। अगर तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करते

0: मुझे उसकी आत्मा में प्रवेश मिल जाता, मेरी प्रायश्चित की साधना पूर्ण हो जाती।
1: जब से तुम मेरे सपने में आई हो, मैं भटक गया हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा पिछला जन्म क्या था, पर तुम्हें इस प्रकार से पाकर मैं अनुभव कर रहा हूँ कि अवश्य हमारे जन्म जन्म का साथ है।
0: अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मुझे पा सकते हो।
1: कैसे?
0: अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लो।
1: मेरा सर चकरा रहा है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं दो।
0: समय हो गया है, मैं अधिक देर यहां नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ, तुम्हारे पास सोचने का समय है। इस जन्म में भी हम न मिल सके तो मैं अगले जन्म तक भटकती रहूंगी।

0: शंकर, शंकर मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था रे? भला ऐसे भी कोई रूठता है अपने माँ बाप से? अजी सुनते हो, शंकर आ गया, शंकर वापस आ गया।
1: आ गए जनाब, खूब नाम रोशन किया है अपने माँ बाप का। वो प्रभुनाथ जो सबके सामने सिर ऊंचा करके चलता था, आज गर्दन झुका कर चलता है। खड़े क्यों हैं? तशरीफ लाइए, ये आपके बाप का ही घर है।
0: कैसी बातें करते हैं आप? जाने कहां कहां भटक कर बेटा घर आया और आप चली कटी बातें कर रहे हैं।
1: और क्या करूं, इसे गले लगाऊं, शाबाशी दूं? इस दीवाने ने मुझे पागल कर दिया है। इससे पूछो, पूछो इससे कि जन्म से लेकर अब तक हमने इसके भले के सिवा कुछ और सोचा है? शादी भी इसके भले के लिए की, एक सुशील होनहार पढ़ी लिखी लड़की से, जिसे ये नालायक पहली रात उस बेचारी का मुंह देखे बिना ही उसे ठुकरा कर भाग गया।
0: बेटा,
1: क्या इसलिए किसके सपने में कोई और आती थी?
0: चल बेटा चल, तू कुछ ख्याल मत कर। जब तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता, ये यूं ही गरजते रहेंगे।
1: उधर कहां जा रहे हो सपने के पुजारी? तो चली गई। पहले ही स्वागत में अपना अपमान सहकर कब्रों की दीवारों से सिर टकरा टकरा कर वो बिचारी कैसे जीती?
0: ये सच है बेटा, बहू यहां नहीं है। उसे हमने उसके कहने पर उसके माँ बाप के पास भेज दिया। सुना है जो मकान उसके पिता ने उसे दहेज में दिया था, उसने उसी में रहने का फैसला किया है। तुम कहोगे तो हम उसे बुला भेजेंगे।
2: नहीं माँ, मैं खुद जाऊंगा वहां। मैंने उसका अपमान किया है, मैं उसका अपराधी हूं। मेरे ही कारण ये सब कुछ हुआ है, मैं ही इसे भोगूंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा माँ, यही मेरा प्रायश्चित होगा।
1: सुबह का भूला शाम को घर वापस आए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इसे अकल दी। हम कल ही चलेंगे बहू के पास, हम भी तो उसके अपराधी हैं।

0: अरे ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो
1: बेटा, यही तो वो घर है जो बहू को उसके पिता ने दिया है।
0: पर माँ, मैं तो यहाँ
1: पहले भी आए हो?
0: नहीं,

0: अरे पंडित जी, आप अचानक?
1: हाँ भोला बाबा, अमानतदार को उसकी अमानत सौंपने आया हूँ।
0: अरे शंकर बाबू, आप फिर आइए आइए, पधारिए।
1: ये मेरा बेटा है शंकर।
0: अरे इन्हें कौन नहीं जानता, बरसों तपस्या के बाद ही उमा ने भगवान शंकर को पाया था।
1: बाबा लेकिन
0: लेकिन क्या, ये सब समझता हूँ, पर तुम किसी बात की चिंता मत करो। जाओ ऊपर कमरे में जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा में होगी।

0: अंदर आने को नहीं कहोगी?
1: आज भी आपको पूछने की जरूरत है? ये घर तो आप ही का है और ये कमरा भी आप ही का है।
0: और तुम?
1: अगर आप अपना समझें तो मैं भी।
0: इसीलिए तुम्हें लौट आया, पर मेरी मंजिल के चेहरे पर आज भी घूंघट है।
1: आपने इसे उठाया ही नहीं तो ये हटता कैसे?
0: ठीक है, तो आज मैं अपने सभी गुनाहों की माफी एक साथ मांग लेता हूं। तुम्हें तो मेरे सपनों की देवी, जिसे मैं दीवाना बनकर खोजता फिरा, वही रंग, वही आंखें, वही मुस्कान। तुम्हें तो उस दिन आधी रात मुझे इस मकान में मिलने आई थी।
1: मैं आई थी?
0: हाँ? खैर खैर, छोड़ो इनसे बातों को, वरना मैं फिर पागल हो जाऊंगा। आओ आओ, मेरे सीने से लग जाओ। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। आओ, जाओ।
1: मैं भी जन्म जन्म से तुम्हें पाने के लिए इसी बंद गली के आखिरी मकान में भटकती रही।
0: बंद गली का आखिरी मकान मत कहो, ये हमारा स्वर्ग है, ये हमारा स्वर्ग है।
1: शंकर,
2: अभी आप सुन रहे थे नाटक कर्फ्यू की रात। कलाकार थे भोला बाबा, नील कमल चटर्जी, M.N. गुर्जर, अविनाश नारायण, मीरा गुप्ता और पद्मिनी गुप्ता। लेखक थे दंगुली कक्कड़ और प्रस्तुति किशोर कुमार की थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
3: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 14 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आरोग्यम का विषय है सिर की चोट, कारण, लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 11 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच।

0: हमारा फोन नंबर है 222-10-52 यानी 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सिर की चोट कारण लक्षण और उपचार विषय पर परामर्श के लिए हमें फोन कीजिए गुरुवार यानी 11 जून को 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, तो कीजिए हमें फोन और सुनते रहिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है बागेश्वरी। आपके साथ तबले पर हैं शुभांकर बनर्जी।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग था बागेश्री। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140

कल प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।